0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और उर्दू अदब में ना एक्चुअली कई सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस में बहुत बार जो प्रियतम होता है, जो प्रिय होता है, वही ईश्वर होता है। हाँ हाँ, कई बार लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है कि अरे उर्दू में तो प्यार की बातें होती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो प्यार में प्रिय कह रहा है शायर या फिर प्रिय कह रही है शायरा, वो प्रिय जो है वो ईश्वर भी हो सकता है। अब आप शमीम अब्बास का ये शेर देखें, कहते हैं कि कभी मैं कदा कभी बुत कदा, कभी काबा तो कभी खानकाह। कभी मैं कदा कभी बुत कदा, कभी काबा तो कभी खानकाह। ये तेरी तलब का जुनून था, मुझे कब किसी से लगाव था। आए हाय हाय हाय हाय। और ये तलब किसकी है यार? ये तलब ही तो उसकी है जो वो जो रोशनी है सफेद, है ना, जिसमें हम सबको एक दिन मिल जाना है, उसी की तो तलब है। कभी मैं कदा कभी बुत कदा, कभी काबा तो कभी खानकाह। ये तेरी तलब का जुनून था, मुझे कब किसी से लगाव था। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, वेलकम टू द शो, एंड यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Energy.
2: Uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Milchi, burga.
3: Hello.
4: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है. अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए. कृपया लाइन होल्ड करें. हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं.
5: हेलो.
3: हेलो.
5: कौन बोल रही हैं
3: आप? कौन बोल रही हैं?
5: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास.
3: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था.
5: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ.
3: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया.
5: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार. मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
3: ये तो वहाँ से मेरे पास,
5: अरे यार
3: जैसे आपके पास आया कि भी अगर आप खाली बैठे.
5: हो सकता है, हो सकता है.
4: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है. कृपया लाइन होल्ड रखें. आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा.
5: हेलो.
3: हेलो.
5: कौन बोल रही? अरे भाई Hello? यार मैं लड़की के चक्कर में यार, कहाँ से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन मैं कहाँ से लाइन पे आ रहा हूँ यार? तू लाइन में आ रहा है या लाइन में आ रहा हूँ? तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है. मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे. हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरे को जा रहा
3: है.
5: बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में.
4: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें. अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू. सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार. आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
3: तो अब वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
6: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
7: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
6: Renew?
7: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
6: What better way to celebrate than with something timeless?
7: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
9: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
8: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
9: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
8: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
10: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
11: लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा. Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
12: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब मौका है, दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपका ताशी आपको रूबरू कराए हमारे आज के शायर कफील आजर अमरोहवी साहब से। मुंबई में इनका जन्म हुआ और फिल्म गीतकार भी रहे। इनकी नज्म बड़ी फेमस है, आपने पक्का सुनी होगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जगजीत जी की आवाज ने उसे फेमस किया है ना। और कफील आजर अमरोहवी साहब, मतलब जितनी बात करी जाए इनके बारे में उतनी कम, लेकिन इनके कुछ शेर आपको मैं सुनाऊं। कि पहला तो इनका शेर ये मुझे बड़ा सुंदर लगता है, कहते हैं कि उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है, एक एक बात में सच्चाई है उसकी लेकिन अपने वादों से मुकर जाने को जी चाहता है। कफील आजर अमरोहवी साहब से आज मैंने आपको रूबरू कराया, इनको और पढ़ें एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मां स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 732-357-8200। जय गुरुदेव।
5: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
9: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
10: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: It's 8:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम, RK Jewels. Best quality, best price.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका दाशी है आपके साथ। और दोस्त, ऐसे ही थोड़ी ना हर कोई राइटर आर्टिस्ट के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, क्योंकि राइटर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, कोई भी इंसान जो आर्ट प्रैक्टिस करता है वो आप ही के फीचर्स आप ही को ऐसे बता देगा ना कि आप हतप्रभ रह जाएंगे, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और इसीलिए हर कोई राइटर्स या फिर यू नो म्यूजिशियंस इन सब के साथ प्यार में पढ़ना चाहता है, उनकी म्यूज बनना चाहता है। कलीम आजिज साहब का शेर देखें, कहते हैं कि इधर आ हम दिखाते हैं गजल का आईना तुझको। इतना प्यारा शेर है ना ये, इधर आ हम दिखाते हैं गजल का आईना तुझको, ये किसने कह दिया गेसू तेरे बरहम नहीं प्यारे, बरहम मतलब बिखरे हुए। इधर आ हम दिखाते हैं गजल का आईना तुझको, ये किसने कह दिया गेसू तेरे बरहम नहीं प्यारे। कौन कह रहा है कि बिखरे हुए बाल अच्छे

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका ताशी नजर करे आज का ताशी अनप्लग्ड आपके लिए और आज जो नगमा मैं आपके लिए नजर कर रहा हूं उसके जो लेखक हैं वो हैं प्रसून जोशी जी, उसे कंपोज किया शंकर एहसान लॉय ने और आवाज दी श्रेया घोषाल और जावेद बशीर जी ने। और ये नगमा मुझे पसंद इसलिए है क्योंकि इसमें रंगरेज एक लफ्ज है जिसका बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि रंगरेज जो लफ्ज है उसके दो मानी आते हैं, एक तो वो इंसान जो आपके कपड़े रंगता है, दूसरा वो ऊपर वाला जिसने हर किसी को एक रंग से रंग के भेजा है, है ना। बहुत खूबसूरत नगमा है, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट्स, और आपके लिए नजर है ओ रंगरेज़।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका दाशी है आपके साथ, और जिससे आप इश्क करते हैं, जो आपकी माशूका है या फिर माशूक है, जो आपके आशिक हैं, उनके साथ वक्त बिताना भी ना एक तरीके का नशा होता है दोस्त। कसम से एक नशा है जो कि ऐसा सर चढ़ जाता है ना कि उनको छोड़ के जा रहे हो तो ऐसा लगता है कि यार ये वक्त कहाँ चला गया, मैं कितनी देर था यहाँ पे, कुछ अंदाजा नहीं रह जाता। मुरीर नियाजी साहब का एक शेर देखें आपको नजर है, कहते हैं कि ये कैसा नशा है, मैं किस अजब खुमार में हूं। खुमार मतलब इंटॉक्सिकेशन। ये कैसा नशा है, मैं किस अजब खुमार में हूं, तू आके जा भी चुका है, मैं इंतजार में हूं। हाय हाय हाय हाय हाय, कितने खूबसूरती से लिख दिया है कि इमोशंस ना रजिस्टर ही नहीं हो पाते। ये कैसा नशा है, मैं किस अजब खुमार में हूं, तू आके जा भी चुका है, मैं इंतजार में हूं। है कि नहीं? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कुछ मजेदार प्यार रहा होगा वो। क्या किस्सा था, थोड़ा हमको भी बताओ। इंस्टाग्राम पे मिर्ची ताशी MIRCHITASHI के नाम से आपको मिल जाऊंगा, वहां पे करो मुझे मैसेज एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Gambana. Murga, murga. La virbala murga. Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Oh, madam, good evening.
3: Hi.
4: बैंक से बोल रहे हो ना, हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
3: सब्जी बेच रहे हैं या लोन के लिए?
4: पहले सब्जी बेचता था।
3: अगर अगली बार फोन आ गए ना
4: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
3: हेलो
4: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा।
3: वे वही आके ऐसा तेरे बैठ मारूंगी ना।
5: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
4: मैडम, आपका तो मुर्गा बन गया है।
5: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था, ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
3: नहीं,
5: से सॉरी। प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com। कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: कविता कॉर्नर।
1: कि आपका ताशी आज के कविता कॉर्नर में अशोक वाजपेयी साहब की कविता का एक टुकड़ा आपको सुनाए, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर बच सका तो वही बचेगा हम सब में थोड़ा सा आदमी, अगर बच सका तो वही बचेगा हम सब में थोड़ा सा आदमी जो रौब के सामने नहीं गिड़गिड़ाता, अपने बच्चे के नंबर बढ़वाने नहीं जाता मास्टर के घर, जो रास्ते पर पड़े घायल को सब काम छोड़कर सबसे पहले अस्पताल पहुंचाने का जतन करता है, जो अपने सामने हुई वारदात की गवाही देने से नहीं हिचकिचाता, अगर बच सका तो वही बचेगा हम सब में थोड़ा सा आदमी। कविता आगे भी और है, पढ़िएगा। अशोक वाजपेयी साहब की वन ऑफ माय वेरी फेवरेट कृतियों में से एक है। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप और ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Mirchi, yoga class. Mirchi, yoga class.
1: परेशानी, आपके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रश को भेजे हुए मैसेजेस के टिक नीले नहीं हो रहे हैं। इसका उपचार है, गहरी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे ले आएं, क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारी लीग से बाहर है ब्रो। औकात में रहो, सुखी रहो। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start chustiyon mein. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.
2: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि आपका ताशी पलटे अपनी डायरी के सफ़े और कर दे आपके नज़र। तो ना मेरी एक छोटी बहन है, वो मुझसे बात कर रही थी, वो बोली छोटी बहन, वो मुझसे बातचीत कर रही थी और कॉलेज वॉलेज गई है, तो उसने बोला कि ताशी भैया एक लड़का है मुझे पसंद आ रहा है और ऐसा वैसा दुनिया जा। वो मुझसे बातचीत कर रही थी और कॉलेज वॉलेज गई है, तो उसने बोला कि ताशी भैया एक लड़का है मुझे पसंद आ रहा है और ऐसा वैसा दुनिया जहान। मैंने बोला

वो उमर अंसारी का शेर है ना कि मुसाफिरों से मोहब्बत की बात कर लेकिन मुसाफिरों से मोहब्बत की बात कर लेकिन मुसाफिरों की मोहब्बत का एतबार ना कर। आए हाय आए यही शेर बोल दिया मैंने उससे, फिर और क्या कहता। और यार ये जो 5 साल होते हैं ना, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि 18 से लेकर 23-24 ये जो 5 साल होते हैं, इंसान इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है, इधर उधर घूमता रहता है कि इस वक्त पे किसी पक्की चीज में बंध जाना, अरे किसी का अगर हो रहा है तो बिल्कुल बंधे, मतलब माशाल्लाह उससे बेहतर और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा मैं सोचता हूँ, आपको क्या लगता है बताइए मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची दाशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, और हाल ही में हरिवंश राय बच्चन साहब की एक बड़ी खूबसूरत रचना कविता मेरे पढ़ने पड़ी और पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया कि आपको सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है मैंने गा कर दुख अपनाए, कभी न मेरे मन को भाया, जब दुख मेरे ऊपर आया, मेरा दुख अपने ऊपर ले कोई मुझे बचाए। मैंने गा कर दुख अपनाए, कभी न मेरे मन को भाया, जब जब मुझको गया रुलाया, कोई मेरी अश्रु धार में अपने अश्रु मिलाए। मैंने गा कर दुख अपनाए, पर न दबा ये इच्छा पाता, मृत्यु सेज पर कोई आता, कहता सिर पर हाथ फेराता, ज्ञात मुझे है दुख जीवन में तुमने बहुत उठाए। मैंने गा कर दुख अपनाए। कविताएं, गजलें, गीत यही तो करते हैं। जब कोई नहीं होता जिससे आप अपना दुख बांट सके तो वो आपका सहारा बनते हैं, आपका ढांढस बंधाते हैं। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप और आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirci, it's hot.
1: Mirci.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La birba la burga. Mirci, burga.
3: Hello?
4: Hello, Mr. Vipul, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
3: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
4: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
3: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
4: हाँ बताइए
3: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
4: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
3: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
4: मैं कुछ भी करूं यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
3: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूं ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
4: बिल्कुल,
3: से कम मुझे
4: बिल्कुल से बिल्कुल सही कह रहे हैं
3: जा कहां रहा है
4: नहीं वो जा कहां रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
3: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको
4: वैसे आप बुरा मत मानना आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
3: यार क्या बात कर रहा
4: है
3: मतलब
4: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उस पर मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
3: चल
4: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
3: बिल्कुल
4: क्या बात कर रहे हैं यार मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
3: हेलो
4: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं आप फोन काट रहे हैं यार
3: आपको से फोन मत करियो ना मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
4: क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात एक बार विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: तेरा क्या होगा कालिया
6: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
5: अब मिर्ची खा
7: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
8: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
9: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
10: Mirchi. Mirchi. Yoga class. Mirchi yoga class.
11: Pareshani. जिम मेंबरशिप ले ली है जा नहीं पा रहे पुराने कपड़ों में आ नहीं पा रहे एक काम करे उसके बाद में एक और काम करे वो दोनों खत्म हो जाए तो एक काम करे फिर से एक काम करे खूब सारे काम करे 10 काम करे करत करत अभ्यास ते शरीर से जाए सुजान तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो
9: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स हॉट
5: तेरा क्या होगा कालिया
6: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
5: अब मिर्ची खा
7: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
9: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और वक्त हो चला है मेरा मिर्ची महफिल से जाने का।
0: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग।
1: लेकिन उससे पहले मौका है, दस्तूर है कि आपका ताशी नजर करे आज का ताशी अनप्लग्ड आपके लिए। और आज जो नगमा मैं आपके लिए नजर कर रहा हूं उसके जो लेखक हैं वो हैं प्रसून जोशी जी, उसे कंपोज किया शंकर एहसान लॉय ने और आवाज दी श्रेया घोषाल और जावेद बशीर जी ने। और ये नगमा मुझे पसंद इसलिए है क्योंकि इसमें रंगरेज एक लफ्ज है जिसका बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि रंगरेज जो लफ्ज है उसके दो मानी आते हैं, एक तो वो इंसान जो आपके कपड़े रंगता है, दूसरा वो ऊपर वाला जिसने हर किसी को एक रंग से रंग के भेजा है, है ना। बहुत खूबसूरत नगमा है, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट्स, और आपके लिए नजर है ओ रंगरेज।

मुलाकात होती है हफ्ते के उस पार। स्टे ट्यून टू मिर्ची महफिल। और अगर आप मुझसे कुछ भी बात करना चाहते हो तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सभी फिल्मों की प्रेम कहानियों का इतिहास गवाह रहा है कि जब जब हंसते गाते खेलते बच्चों ने प्यार किया है, उनके पिताओं ने उसका विरोध किया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पता नहीं ये पिताजी लोग ठंड क्यों नहीं रखते थे, why won't they just chill? अभी मैंने प्यार किया फिल्म की बात करें, है लड़की के पापा तो ओके थे, लेकिन लड़के के पापा जो अमीर थे उनको ऑफ कोर्स प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज उनकी क्लास ऊंची थी, उनके पास ज्यादा पैसा था। गरीब घर की लड़की, हमको नाइट चाहिए। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट सॉन्ग, नेक्स्ट मूवी का सॉन्ग जो हम सुनने वाले हैं, कयामत से कयामत तक, इसमें तो बहुत ही बड़ी विकट समस्या थी, खानदानी दुश्मनी, लेकिन नतीजा क्या निकला, दोनों बच्चों की मौत और पछतावा। तो काहे को प्यार का विरोध करना। वैसे इस मूवी ने, इसके गाने ने बाप बेटे के रिलेशनशिप को लेकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंथम हमको दे दिया था, तो सुन लेते हैं। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।
1: दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, क्या बना? मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मैडम, गुड इवनिंग।
3: हाय,
4: बैंक से बोल रहे हो ना? हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
3: तो सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
4: पहले सब पहले सब्जी बेचता था।
3: अगर अगली बार फोन आ गया ना
4: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारू और सारे दांत बात कर।
3: हेलो
4: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा मैं।
3: मारूंगी ना।
5: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ही एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
3: है।
4: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
5: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था, ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
3: नहीं,
5: से सॉरी,
3: सॉरी नवीन, सॉरी।
5: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को है।
3: कुकड़ू गो।
6: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
7: ये पटा।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: प्यार मोहब्बत में जिए मरे जा रहे हैं, बाप की मौत के बदले का क्या? कब लेगा रे तू अपने बाप का बदला?
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: भाई हिंदी फिल्मों में बाप की मौत के बदले वाली थीम तो पिछले जन्म से चले आ रही है।
1: हर डेकेड में पता नहीं कितनी ऐसी फिल्में आई हैं जिसमें
0: बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ कुछ गलत हुआ या उन्हें मार दिया गया और फिर फिल्म के हीरो ने वो होते हुए देखा और फिर बड़ा होके उसने उसका बदला लिया। लेकिन 80s तक आते आते ना ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ। उसमें ये हुआ कि जो माँ थी उसने अपने बच्चों को सारी मुश्किलें फेस करते हुए पाल पोस के सिर्फ इसीलिए बड़ा किया ताकि वो बड़े होके अपनी बाप की मौत का बदला ले सकें। रिवेंजफुल माँ जिसके बच्चे उसका हथियार।
1: पिक्चर ब्लॉकबस्टर है यार ऐसी एक फिल्म। राम लखन हा? पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu।
1: सुनते रहिए मिर्ची।

0: आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Purani Jeans with Charu, only on

दयावान फिल्म का गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस फिल्म की स्टोरी क्या है, एक बच्चा अपने बाप को पुलिस के हाथों अनलॉफुली मरते हुए देखता है, पुलिस से नफरत करता है, बड़ा होके गैंगस्टर बन जाता है। पर हिंदी फिल्मों में पिताओं ने बहुत अलग अलग चीजें दी हैं बच्चों को, पैसा, प्यार, परवरिश, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, ट्रॉमा भी दिया है, लाइफ में लेसन्स, लाइफ में मोटिव भी दिए हैं, सबसे बड़ा मोटिव बदला। अच्छा, एक फिल्म थी जिसमें बाप अपने बेटे के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज छोड़ के गया था, एक गैजेट जिसको हाथ पे पहन लो तो इंसान गायब हो जाए, दिखाई न दे, मिस्टर इंडिया। वैसे इस फिल्म में अनिल कपूर का जो किरदार था अरुण भैया, वो जिस तरह से कुछ अनाथ बच्चों को अपने घर में रखते हैं, उनके लिए प्रोवाइड करते हैं, आई थिंक वो एक फादरली लव की अलग ही डेफिनेशन है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Pudani Jeans with Charu, only on

डॉन और डॉन का हम शक्ल विजय। हाई मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और अमिताभ बच्चन साहब ने कुछ 15-20 फिल्मों में डबल रोल तो किया होगा, जिसमें काफी फिल्मों में बाप बेटे का किरदार भी उन्होंने निभाया। एक तो अपनी टेलीविजन की जो राष्ट्रीय फिल्म है उसमें वो बाप बेटे बने हैं सूर्यवंशम मूवी में, फिर एक लाल बादशाह। और पुरानी फिल्मों की बात करें तो आखिरी रास्ता, देश प्रेमी, अदालत, इन सारी फिल्मों में बाप भी अमिताभ बच्चन, बेटे भी अमिताभ बच्चन। और एक फिल्म में तो इन्होंने अति कर दी थी, बाप का रोल भी अमिताभ बच्चन और दो जुड़वा बेटों का रोल भी दोनों अमिताभ बच्चन। ट्रिपल रोल इन महान, महान ही है ये बंदा। वैसे अमिताभ बच्चन के उनकी काफी फिल्मों में उनके फादर से काफी ऐसे डिफिकल्ट से रिलेशनशिप रहे हैं, या फादर के किरदार की वजह से उनको काफी कुछ सहना करना पड़ा। उस बारे में भी करते हैं बात थोड़ी देर के बाद। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

शराबी फिल्म का गाना, वही फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन के किरदार विकी की जिंदगी के तंबू तीन बंबुओं पे खड़े होते हैं। शायरी, शराब और आप, ये आप इसमें है मुंशी फूलचंद, जो ओम प्रकाश जी प्ले करते हैं, जिन्हें अमिताभ बच्चन का किरदार फादर फिगर मानता है। वो इसीलिए बिकॉज उनके जो फादर है इन द फिल्म, जो प्राण साहब प्ले करते हैं, वो बहुत ही रईस बिजनेसमैन है। उनको पैसे कमाने से फुर्सत ही नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है बच्चे के लिए, तो बच्चा इग्नोर होके शराब पीना शुरू कर देता है। अमिताभ बच्चन साहब की बहुत सारी फिल्मों में उनके जो फादर के साथ रिलेशनशिप रहे हैं इन द फिल्म, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं, लेकिन बच्चन साहब ने वो रोल क्या एफर्टलेसली प्ले किए हैं। जैसे त्रिशूल मूवी भी, जहाँ पे वो बाप का बदला नहीं माँ का बदला लेते हैं बाप से, संजीव कुमार प्लेड हिज फादर ना। दीवार फिल्म में भी द काइंड ऑफ रिलेशनशिप ही हैड विद हिज फादर, व्हाट ही थॉट अबाउट हिज फादर, यू नो, सत्यन कपूर जी उनका फादर प्ले करते हैं और उनके साथ जो भी होता है फिल्म में, अपनी फैमिली को वो अबैंडन करके चले जाते हैं। वो जो अबैंडन ह्यूमिलिएटेड बेटे विजय का रोल अमिताभ बच्चन साहब ने निभाया है ना भाई, हैट्स ऑफ। देन आई थिंक एक और फिल्म जहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप फादर सन का दिखाया गया है, वो है शक्ति फिल्म, जिसमें फादर प्ले करते हैं दिलीप कुमार साहब और बेटे अमिताभ बच्चन, वो भी बहुत सही है। चलिए इसी फिल्म का ये सही सा गाना भी सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only.

अमर अकबर एंथनी फिल्म का ये गाना, सुपर्ब फैमिली ड्रामा जिसमें पूरा परिवार बिछड़ जाता है। और अक्सर इस फिल्म में ना ये जो बच्चे खोने वाला दोष है ये माँ पे निरूपा रॉय जी पे मर दिया जाता है कि हर फिल्म में बच्चे खो देती थी। हेलो, बाप के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता है। जो बाप का रोल प्ले करते हैं प्राण साहब इन द मूवी, वो बच्चों को पार्क में अकेला छोड़ के चले जाते हैं। चलो सिचुएशन ऐसी होती है, गुंडे उनके पीछे पड़े होते हैं, बट बच्चों को पार्क में अकेला कौन छोड़ के जाता है, इसीलिए तो इधर उधर हो जाते हैं तीनों बच्चे, सब बिछड़ जाते हैं। अच्छा, एक और मूवी थी 1965 की वक्त, जिसमें पूरा परिवार बिछड़ जाता है। वेल दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। लेकिन उसमें भी जो फादर का रोल बलराज सानी प्ले करते हैं, उनको ऐसा दिखाया जाता है कि उनको खुद पे ऐसे बहुत विश्वास होता है, वो डेस्टिनी में, टाइम में, किस्मत में, इन सारी चीजों में ऐसा बिलीव नहीं करते, और फिर उनके साथ वक्त अपना खेल खेल जाता है। खैर, इस फिल्म का एक गाना है जो अक्सर शादियों के लेडीज संगीत में फादर्स या दादाजी नाना जी की परफॉर्मेंस के लिए यूज किया जाता है, जहां वो अपनी शरीके हयात, अपनी हमनशी, अपनी जहर अजबी की तारीफ करते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: में डालो, एटीएम कार्ड बाहर निकालो, इस क्रिया को 2-3 बार दोहराओ। ये करने से आपको कमरे के बाहर सोफे पे नहीं लेटना पड़ेगा और खाने में ताने भी नहीं मिलेंगे।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई कर।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
7: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एक और फादर चाइल्ड रिलेशनशिप जिसको हिंदी फिल्मों में बहुत एक्सप्लोर किया गया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये एक्चुअली थोड़ा सा एक कॉन्ट्रोवर्शियल टैबू सब्जेक्ट है, विच इज इललेजिटिमेट यानी कि नाजायज बच्चा एंड फादर। अभी देखो यूजुअल ड्रिल क्या होता था पुरानी फिल्मों में कि हीरोइन जो है या वुमन कैरेक्टर जो है वो अनइंटेंशनली प्रेग्नेंट हो जाती थी और फिर वो क्लासिक क्लीशे डायलॉग आता था, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, एंड जो फादर है ही वुड चिकन आउट या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था, या अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता भी था तो छुप छुप के, और देयर वुड बी सम अदर गुड मैन जो इस वुमन से शादी कर लेगा, बच्चे को एक्सेप्ट कर लेगा, उनको प्यार परवरिश प्रोटेक्शन देगा। प्रोटेक्शन इज अ रॉन्ग वर्ड आई थिंक आई यूज्ड, मतलब उनको सेफ रखेगा, उनके लिए प्रोवाइड करेगा। बट देयर इज दिस वन मूवी जिसमें सब्जेक्ट को इतना ब्यूटीफुली ट्रीट किया गया है ना, इट इज सो हार्ट वार्मिंग एंड ओवरवेलमिंग एज वेल। ये है 1983 की मूवी मासूम। हैट्स ऑफ टू मासूम फिल्म की पूरी टीम। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: ये हिंदी फिल्मों में जितनी भी ऐसी फिल्में आई है ना जहाँ पे पिताजी प्यार के दुश्मन हो गए, उन सारी फिल्मों की बाप फिल्म पता है कौन सी है? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इन सारी फिल्मों की बाप फिल्म है द आइकॉनिक कल्ट क्लासिक टाइमलेस मुगले आजम। और उसमें वो जो प्यार के दुश्मन पापा का रोल निभाया है ना पृथ्वीराज कपूर जी ने, हैट्स ऑफ, क्या एक्टिंग है उनकी, क्या आवाज है उनकी। वो मतलब वो प्यार के दुश्मन होते हैं तो भी आप उनसे रिलेट करते हो, खास करके जब वो कहते हैं कि बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं अपने उसूलों के गुलाम हैं, ऐसा ही कुछ होता है। मतलब वो एक शहंशाह भी हैं और एक वो बाप भी हैं, उसका जो उन्होंने पोर्ट्रेयल किया है ना ऑसम। और वो एक बात जो अनारकली को कहते हैं, वो एक जो डायलॉग है वो सुनते हैं,
1: अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे।
0: ओए होए होए होए, गूज़बम्प्स। किसी प्रेम कहानी में अगर किसी पापा ने विलन प्ले किया है ना तो इन्होंने किया है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

जॉनी, मेरा नाम, मूवी का नाम, मेरा नाम है चारू। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स और मिर्ची। और ये जो मूवी थी ना जॉनी मेरा नाम, इसमें जो हेमा मालिनी जी का किरदार रहता है वो अपने लॉस्ट फादर को ढूंढ रहा होता है। और पुरानी फिल्मों में बहुत कम ऐसा हुआ है कि बाप बेटी के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया गया हो, पोर्ट्रे किया गया हो। ज्यादातर बाप बेटा ही होता रहता था। अच्छा, दो फिल्में जो मुझे डिस्टिंक्टिवली याद आ रही है ना, जहाँ पे बाप बेटी के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया गया है, और ये दोनों फिल्में ऋषिकेश मुखर्जी की हैं। एक तो 1969 की आशीर्वाद, जिसमें अशोक कुमार फादर प्ले करते हैं और अपनी बेटी के बचपन में वो उससे अलग हो जाते हैं क्योंकि एक जुर्म में उनको जेल हो जाती है। फिर जब वो जेल से बाहर आते हैं तो अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। दूसरी फिल्म 1967 की अनुपमा, जिसमें अनुपमा का रोल शर्मिला टैगोर ने प्ले किया है। इसमें इनके फादर के मन में इनके लिए बहुत कड़वाहट होती है बिकॉज इनको जन्म देते वक्त इनकी माँ गुजर जाती है, जिनसे फादर बहुत प्यार करते हैं। वैसे इस फिल्म के गाने भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। ये वाला सुन लेते हैं, हेमंत कुमार की कॉम्पोजिशन, कैफी आजमी का लिखा हुआ, लता मंगेशकर की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और मिर्ची।

0: कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: पुरानी जींस चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

नहीं है। एक बार बचपन में ना मैंने हेयर बैंड लगाया हुआ था सर पे, तो मेरे पापा ने पता है क्या बोला, मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मेरे पापा ने बोला कि छोटे होते अगर हमारे पास भी ये होता ना तो देवानंद जैसा हेयर स्टाइल बनाना कितना आसान हो जाता। तो देवानंद साहब का वो जो पफ्ड हेयर स्टाइल था, आई थिंक पूरा 50s और मिड 60s तक, इट वॉज अ रेज। मतलब लड़कियां तो मरती थी उनके उस हेयर स्टाइल पे और लड़के उसे इमिटेट करने की कोशिश करते थे, जैसे कि मेरे पिताजी। मुझे याद है एक बार मेरे पापा टेप रिकॉर्डर पे गाने सुन रहे थे, तो एक गाना आया देवानंद का और मैंने अपने पापा के सर पे हेयर बैंड लगा दिया और बोला लो आप भी देवानंद बन गए। वो गाना सुनते हैं ना यहाँ पर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: परेशानी, आपके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रश को भेजे हुए मैसेजेस के टिक नीले नहीं हो रहे हैं। इसका उपचार है, गहरी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे ले आएं, क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारी लीग से बाहर है ब्रो। औकात में रहो, सुखी रहो। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: पुरानी जींस चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी हिंदी फिल्में और उनके बाप। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई कितने अलग अलग तरह के फादर्स के किरदार हुए हैं हिंदी फिल्मों में। गरीब मजबूर बाप, उसूलवादी बाबूजी, अमीर घमंडी डैड, प्यार के दुश्मन पिताजी, या वो बाप जिनके लिए विलन से बदला लिया जाता था। और कितने अमेजिंग एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने ये किरदार प्ले किए हैं। कुछ पॉपुलर नाम लूं तो AK हंगल साहब, नासिर हुसैन, मनमोहन कृष्ण, ओम प्रकाश जी, उत्पल दत्त जी, डेविड या अजीत साहब, कई बार विलन पापा भी होते थे ना, या फिर विलन प्लस कॉमिक प्लस कैरेक्टर रोल्स वाले कादर खान साहब, जीवन साहब, या और भी ऐसे बहुत सारे नाम है। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम एंड हैट्स ऑफ टू रियल फादर्स जिनसे शायद ये किरदार कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हो। वो रियल फादर्स जो बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, थक भी जाएं तो आह भी नहीं भरते। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा, ओनली ऑन 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम एचडी2. इट्स हॉट.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: शायद तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: परेशानी, आ हा हा हा हा, जिम मेंबरशिप ले ली है, जा नहीं पा रहे, पुराने कपड़ों में आ नहीं पा रहे। एक काम करे, उसके बाद में एक और काम करे, वो दोनों खत्म हो जाए तो एक काम करे, फिर से एक काम करे, खूब सारे काम करे, 10 काम करे। करत करत अभ्यास ते शरीर से जाए सुजान। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: बच्चा आज का आसन है यस बॉस आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करूं।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। रेडियो मिर्ची इट्स
1: ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: आर के जूल्स।
1: मंगल आरती,
0: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स।
2: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।

0: Yatra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot. चलिए जानते हैं कि डिप्रेशन को हम कैसे हरा सकते हैं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
2: हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं डॉक्टर श्रेया के साथ।
0: डॉक्टर?
2: हाँ, क्योंकि सिस्टर श्रेया तो हैं, लेकिन मैंने रियलाइज किया बात करते वक्त आपसे कि हर चीज को सॉल्व करने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है हमारी जिंदगी में। तो अगर कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार है तो पैरासिटामोल दे देते हैं, हड्डी टूट गई तो हम एक ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं। हर बीमारी के लिए एक डॉक्टर होता है। तो सोल के लिए किसके पास जाएं, माइंड के लिए किसके पास जाएं, मन की डॉक्टर के लिए हम आपके पास आए हैं। तो मन की जितनी भी पीड़ाएं हैं उनके लिए हम डॉक्टर श्रेया के पास आ जाए हैं।
0: बड़ी अच्छी बात है कि आपने मन की पीड़ा को एक्नॉलेज तो किया। यू नो, यू सी, अगर हम फिजिकल पेन होता है ना, कभी भी उसको चलाते नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्या है वो तो पता होना चाहिए ना। अगर हमारे सर में दर्द है, भले हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, पर जैसे आपने कहा हम क्रोसिन तो लेंगे, एवरी 6 आवर्स लेंगे। मतलब पेन एक साइन होता है कि आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है। पेन बीमारी नहीं होती, लेकिन पेन एक मैसेंजर का काम करता है कि आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। और इमोशनल पेन हमें इतना होता है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, अंदर में डिस्कम्फर्ट है, अंदर में इमोशनल पेन है, पर हम कहते चलता है, ऐसा ही तो है, सबको ही तो होता है, जिंदगी ऐसी तो होती है,
2: तो उसके बारे में कुछ करते नहीं है।
0: उसके बारे में कुछ करते नहीं है, और जब किसी चीज के बारे में कुछ करते नहीं है तो वो बढ़ता है।
2: बिल्कुल,
0: कैविटी है, आप उसके बारे में कुछ करेंगे नहीं तो वो कहाँ तक पहुँचेंगे? रूट तक तो जाएंगे ना।
2: बिल्कुल।
0: तो केवल दर्द को एक्सेप्ट करने से दर्द हील नहीं होता है, उसको एक्नॉलेज करके उसके लिए कुछ करना पड़ता है।
2: वाह, क्या बात की आपने।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर आपको सेल्फ डाउट होता है तो उसे कैसे डील किया जाए?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो चल रही है आसपास के माहौल में, आप जिससे भी बात करें, जिधर देखें, अखबार पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, रेडियो पे सुने, आपको AI का बहुत अभी बोलबाला है। लेकिन बहुत लोगों से जब मैं बात करता हूँ, एक डर है कि ये तो मेरी नौकरी ले लेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं करता हूं आज, ये AI कर लेगा तो मेरी तो जरूरत रहेगी नहीं। ऐसे भय के माहौल में जो मैंने क्रिएट भी नहीं किया, मेरा उस पे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन फॉर व्हाटएवर रीजन वो मेरे पेट पे लात मार रहा है। ऐसे माहौल से गुजरने के लिए जब आप उससे बात करते हुए, लेट्स से मेरे पास कोई आया, मैं उसको मोटिवेट कर रहा हूँ कि कोई बात नहीं यार, अपस्किल करते हैं, कुछ और करते हैं, नई चीजें सीख लेते हैं। लाइक जैसे मेरा फेवरेट एग्जांपल होता है कि 80s में कंप्यूटर्स आए थे, तो कंप्यूटर आने के बाद इंसान खत्म थोड़ा ना हो गए। तो ये AI जो है, हमको इसको भी सीखना पड़ेगा। तो इन ईरा जहाँ पे आपने एक बोला कि जो होता अंदर होता है वो तो ठीक है, लेकिन ये बाहर हो रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। और कुछ लोगों को लगता है ये स्किल हमारे बस की बात नहीं है, तो इस भय से कैसे आगे बढ़ें? क्योंकि अगर मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं क्या करूं?
3: ये चीज हमने कोविड के दौरान भी बहुत देखी थी, जहाँ हम सबको अपने स्किल्स को अडेप्ट करना पड़ा था।
2: जी,
3: चाहे वो एक टीचर था, माना एक सारा जमाना ही टेक्नोलॉजी का आ गया। सारे सेशंस जूम के द्वारा हो रहे थे, जी मीट, जूम, ये नई चीजें थी। लेकिन क्योंकि वो इतना फास्ट हुआ, हमने अपना कम्फर्ट जोन तोड़ा थोड़ा सा, टीचर्स ने भी वो स्किल सीखने की कोशिश करी जो जितना सीख सकता था। अब इसमें दो बातें होती हैं, जो नया स्किल सेट है उसको सीखना, जो आपने कहा अपने को अपस्किल करना, कंफर्ट जोन को तोड़ना, जो कभी भी इजी नहीं होता। एक चीज हम सब कहते हैं कांस्टेंट है, वो चेंज। लेकिन उस चेंज के साथ अपने को चेंज करना और अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना, इट इज नेवर वेरी इजी। एक चाय छोड़ना भी किसी को इजी नहीं लगता है। उसका कारण है, व्हेनेवर यू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, कुछ ना कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। आज आप एक चाय भी छोड़ना चाहेंगे तो उसमें भी अगर समझो मैंने आज पढ़ा कि ये चाय मेरे लिए अच्छी नहीं है, मुझे छोड़नी चाहिए, तो वो केवल एक थॉट काफी नहीं होता। फिर जब आप छोड़ेंगे तो बहुत विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, जैसे आपको सर में दर्द होगा, आपको थकावट महसूस होगी, आपको उतना फ्रेश फील नहीं होगा। और जब ये सब कुछ होगा तो आसपास वाले लोग भी आपको कहेंगे क्या जरूरत है छोड़ने की। सो वी रियलाइज कि एक हैबिट को चेंज करना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, इवन दो वी अंडरस्टैंड कि वो 10-20 दिन की बात है। 10-20 डेज के बाद कोई ग्रीन टी पिएगा, कोई कुछ पिएगा, फिर वो वाली चीज के हम आदती हो जाएंगे और फिर वो विड्रॉल सिम्टम्स भी खत्म हो जाते हैं। तो एक चीज होती है डिटर्मिनेशन, कोई नया स्किल सीखने के लिए भी थोड़ा डिटर्मिंड थॉट चाहिए, थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए, थोड़े विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, उसको ओवरकम करके हम सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीज हमें सीखने नहीं देता है वो उससे ज्यादा जो चैलेंजिंग है वो है हमारा कमजोर मन। भय AI का नहीं है, भय नौकरी छूटने का नहीं है, भय कमजोर मन की निशानी होती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: प्रॉब्लम्स को डील करने का तरीका जानिए अब।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: अगर मन ही सब कुछ है, मन ही का प्रॉब्लम है, तो मन को चेंज करते हैं।
4: तो AI आने में सबको क्यों नहीं नौकरी का डर लग रहा है? मेजोरिटी तो कहीं ऐसे भी हैं कि कहते हैं अब हमारा काम इजी हो जाएगा, ये वाला काम AI कर लेगा। प्रॉब्लम तो फिर वही आ जाती है ना कि अगर ये चीज प्रॉब्लम है तो वो सबके लिए प्रॉब्लम होनी चाहिए, पर प्रॉब्लम माइंडसेट है ना, वो सिचुएशन चैलेंज या टेक्नोलॉजी कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक लाइन हमेशा याद रखना, टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड सर्वेंट बट अ वेरी बैड मास्टर। अगर आप टेक्नोलॉजी के गुलाम बन जाएंगे या टेक्नोलॉजी से डरने लगेंगे, आज AI नहीं था तो भी थोड़े समय पहले बहुत ले ऑफ्स हुए थे कि नहीं हुए थे?
3: बिल्कुल,
4: कंपनीज डाउनसाइज कर रही थी। आपके पास स्किल सेट था, टैलेंट था, डिग्री थी, तो भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि मॉर्निंग में पहुंचते थे और मिड मीटिंग में उनका ईमेल आ जाते थे कि आपको निकाल दिया गया है, एंड फॉर व्हाटएवर रीजंस। तो अनसर्टेनिटी का पीरियड तो है ही, पर उसमें कोई कहता है अच्छा एक दरवाजा बंद हुआ है दूसरा खुल जाएगा, ऐसे भी लोग आपको मिलते हैं?
3: बिल्कुल
4: मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, बिकॉज उनको पता है कि जो भविष्य है वो बनना तो वर्तमान से ही है। फ्यूचर तो कुछ नहीं है, भविष्य वर्तमान की परछाई है। अगर आपका वर्तमान ठीक है तो भविष्य भी ठीक हो जाएगा, एक दरवाजा बंद है दूसरा खुल जाएगा। कोविड में हमने देखा कहीं डायरेक्टर्स थे, कोई जॉब नहीं मिल रही थी, उन्होंने कहा हमने कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। किसी ने सब्जी बेचनी शुरू करी, किसी ने कोरियर का काम करना शुरू किया, किसी ने जूम पे पढ़ाना शुरू किया। वो लोग थे जिन्होंने नेगेटिव सोच करके डिप्रेशन में नहीं गए, उन्होंने कहा अच्छा अब क्या कर सकते हैं। दूसरा कोई कहेगा अगर मेरी नौकरी छूटी है तो चिंता होना तो
3: लाजमी है।
4: अब चिंता होना अगर लाजमी है, जायज है, तो चिंता करते करते एक दो हफ्ते के बाद आप किस में चले जाएंगे?
3: डिप्रेशन में।
4: फिर डिप्रेशन होगा, फिर एनवायरमेंट घर का खराब होगा, और ऐसे व्यक्ति को नई जॉब मिलेगी? नया स्किल सेट वो सीख सकता है, अपने को अपस्केल कर सकता है? नहीं, इट इज वेरी चैलेंजिंग। लेकिन ये फेथ होना कि ठीक है चेंज हुआ है, कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा पर करेंगे, फेथ भी तो अपने पर होना चाहिए ना। पर एक्चुअली हम सबका फेथ, सेल्फ रिस्पेक्ट, फेथ, कॉन्फिडेंस इतना कम है कि बाहर थोड़ा सा हिलता है, वो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स होता है ना, वो बाहर थोड़ा हिलता है, अंदर ज्यादा हिलता है।
3: बिल्कुल, धक धक करता है ऐसे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Depression and anxiety ko life se left swipe kaise kare? Batate hain.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो आपने एक बात कही, इसमें आपने डिप्रेशन को टच किया जो बहुत एक बड़ा टॉपिक है, और शायद कोविड के बाद बहुत बाहर आया, इसके बारे में बहुत बातें हुई। आई थिंक इस पे थोड़ा अब अवेयरनेस ज्यादा है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका एक अलग पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम ऑफिस में काम करते हैं और वो इंसान बोलता है आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, या बोलता नहीं, उसके आस पड़ोस वाले बोल देते हैं, कुछ शर्म के मारे नहीं बोलते हैं, या एक टबू भी होता है कि यार ये क्या बात हुई, कुछ लोग मजाक भी बनाते हैं। इन दैट सिनारियो एक कंपनी को तो काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे एम्प्लॉय के साथ या ऐसे दोस्त के साथ भी कैसे पेश आना चाहिए, कैसे, मतलब काम भी नुकसान ना हो, काम भी होता रहे, और उस इंसान को हैंडल करने में हम बुरे ना बने।
4: से अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ आपको बहुत समय रहना पड़ता है जो डिप्रेस्ड है, वो अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत दर्द में है। वो कुछ गलत बोल भी देता है, वो कुछ गलत कर भी देता है। बहुत केसेस में जब हमें किसी के साथ ऐसा रहना पड़ता है, वो हमारा हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, वर्क एम्प्लॉय भी हो सकता है, उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ने लगता है, क्योंकि वो एनर्जी का धीरे धीरे, जैसे वो कई बार होता है ना, एक को जुकाम होता है, एक को खांसी होती है, तो फिर वो हम थोड़ी देर बाद उसको कहते हैं अरे देखना तूने अपना जो काम मुझे दे दिया, तूने अपनी खांसी मुझे दे दी। तो एक्चुअली उसने अपना जो काम मुझे नहीं दिया होता, मेरी इम्यूनिटी कम होती है तो उसका वायरस मुझे लग जाता है।
3: बिल्कुल,
4: अब वो केयर लेना हमें आता है। ये जो व्यक्ति है ये तन से बीमार नहीं है, ये मन से बीमार है, लेकिन बीमारी तो है। वैसे भी पेशेंट अगर घर में भी हो ना, और अगर थोड़ा लंबा समय के लिए हो, होते हैं ना कई बार क्रॉनिक इलनेसेस भी होती हैं, कोई बार बेड रेस्ट 10-15 दिन का भी होता है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है पेशेंट के, नहीं थोड़ा होता है कि नहीं घर में, तो घर वाले कहेंगे कोई बात नहीं बीमार है ना। ऐसे ही वो व्यक्ति जब मन से बीमार होता है तो वो बहुत वीक होता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है। वो सेंसिटिविटी का मतलब यही नहीं होता मुझे जल्दी बुरा लग जाता है, मैं बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा करता हूँ, ये भी निशानी है कि मैं बहुत कमजोर हूँ। जो एक अच्छा इमोशनली स्ट्रांग व्यक्ति होता है ना, वो गुस्से के वेपन को बहुत ज्यादा यूज नहीं करता है, लेकिन जो कमजोर है वो कंट्रोल करना, कंट्रोल कर करके, गुस्सा कर करके, चीख चिल्ला करके काम कराने का मेथड यूज करता है। तो उस समय पहले तो अपने को याद दिलाना पड़ता है कि बीमार है, कि मैं उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आऊं। नहीं तो बहुत करके क्या होता है, उसने कुछ बोला या उसने कुछ किया तो हम दर्द में जाना शुरू हो जाते हैं। इट इज नॉट इजी टू लिव विद समबडी हु इज ऑल द टाइम गेटिंग एंग्री और इज इन एंजाइटी और इज एक्सपीरियंसिंग डिप्रेशन। उसको हेल्प तो हम बाद में करेंगे, ये हेल्प करने का रूल है। जैसे आपने कभी फ्लाइट में ट्रैवल किया हो, सेफ्टी के लिए वो कहते हैं ना कि यहाँ हवा का दबाव कम होगा, अगर हवा का दबाव कम होगा तो ये ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएंगे, एंड देन दे से किसी को मदद करने से पहले इस चीज का ध्यान देना,
3: खुद की मदद पहले,
4: कि आपने अपना ऑक्सीजन मास्क ठीक से पहना है। एंड देन वी समटाइम्स आस्क पीपल कि अगर आपके सामने आपका बेटा बैठा हुआ है, बच्चा बैठा हुआ है, और वहां से दो ऑक्सीजन मास्क नीचे आते हैं, तो आप क्या करेंगे?
3: पहले लगाओ, लेकिन हम अक्सर बच्चों को पहले लगाते हैं।
4: हम क्यों अक्सर बच्चों को लगाते हैं? हमारी इंटेंशन बहुत प्योर है, क्योंकि हम कहते हैं हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो हमें पहले उनको पहनाना है, हम पहने ना पहने उनको पहनाना है। पर हम ये रियलाइज नहीं करते कि वो इंस्ट्रक्शन किसी बेस से आया था, हवा का दबाव कम है, देयर इज नो ऑक्सीजन। आप अगर उनको पहनाने जाएंगे तो आपके हाथ कांपने लगेंगे, बिकॉज आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो आप उनको भी नहीं पहना पाएंगे और खुद भी नहीं पहन पाएंगे। सो इफ यू वॉन्ट टू हेल्प समबडी,
3: help yourself first.
4: You have to help yourself first. So the first thing, if there is somebody around you who's depressed, who's in pain, you have to take care of yourself. Take care of yourself ka matlab hai, aap dard mein nahi jao.
0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे लोगों के सपोर्ट की बात करेंगे हम अब।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: व्हाट डू यू डू जब आपको काम रोज करवाना है और काम के आड़े आ रहा है, तो प्यार मोहब्बत दया, दया तो नहीं लेकिन
4: दया भी जरूरी है, कंपैशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। कोई दर्द में है कि कंपैशन कोई शब्द नहीं है, कंपैशन एक वाइब्रेशन है। कंपैशन का मतलब क्या है, आप मन में उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा नहीं हो रहे हो। एक है कि मैं मन में सोच रहा हूँ इसका काम मैं ही करता रहूं, इसको मैं ही चलाता रहूं, अभी इसको डिप्रेशन है तो घर में बैठे,
3: ये आ जाता है कभी कभी।
4: तो ये आपने क्या दिया उसको, आप दर्द में गए और आपका जो वाइब्रेशन था वो नेगेटिव था। व्हेन वी से कंपैशन, इट इज नॉट अ वर्ड, ये वर्ड बोलने बहुत अच्छे लगते हैं,
3: इट्स एक्शन।
4: कंपैशन इज वाइब्रेशन, आप मन में सोचते हैं ठीक है ना, जो आज इसके साथ हो रहा है वो कभी जीवन में मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता है, कल को अगर ये मेरे साथ हो, हाउ डू आई वॉन्ट पीपल टू ट्रीट मी
3: वेल।
4: सो द वे यू वॉन्ट पीपल टू ट्रीट यू, जस्ट ट्रीट पीपल दैट वे, द एनर्जी दैट यू सेंड आउट टूडे इज गोइंग टू कम बैक टूमोरो। ये बेस्ट तरीका है जीवन जीने का। जो आप चाहते हैं, जैसे हम हमेशा कहेंगे आपसे कोई कैसे बात करे, तो कहेंगे प्यार से। हम औरों से कैसे बात करें,
3: फटकार से नहीं प्यार से,
4: पर उनको तो प्यार की भाषा ही समझ में नहीं आती, यू नो दैट इज हाउ वी जस्टिफाई। हमें आती है लेकिन उनको नहीं आती, सबको आती है,
3: सबको आती है। कोशिश करके देखो।
4: हाँ, मना जो दर्द में है उसको टाइम ज्यादा लग सकता है, जैसे जो बीमार है वो बीमार है ना, तो उसको खाना खाने में टाइम थोड़ा सा ज्यादा तो लगेगा। आज आपको बुखार है तो आपको पानी का ग्लास भी उठाना भारी लगेगा,
3: बिल्कुल,
4: तो वो काम करना उसके लिए थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होगा। पर आई हैव रियलाइज्ड एंड आई, बिकॉज हम लोग तो बहुत ऐसे लोगों से मिलते हैं उस डिफिकल्ट पीरियड में, अगर कोई उनको सपोर्ट करता है, कोई उनको हेल्प करता है, कोई अपने वाइब्रेशन को प्योर रखता है, थोड़ा चला तो जाता है, हर एक के जीवन से वो पीरियड आता है और चला जाता है, पर उस समय पर जो हम सपोर्ट करते हैं, यही तो है, यही तो वे ऑफ लाइफ है ना। कॉम्पिटिशन नहीं है, कोऑपरेशन है, हम इकट्ठे ही तो हैं।
3: अरे क्या,
4: हम सब यही तो चाहते हैं कि आप भी खुश हम भी खुश, हम सब मंजिल पर एक साथ पहुंचे, यही तो जीवन जीने का तरीका था।
3: कि कॉम्पिटिशन नहीं है, कोऑपरेशन है,
4: शिफ्ट तो वही लेकर के आना है,
3: बिल्कुल,
4: तो ही तो फिर सामने वाले के दिल से दुआ निकलती है और वो दुआ आपको जीवन में बहुत सुकून का अनुभव कराती है, धन भी लेकर आती है। ऐसा नहीं है, जब हम किसी के प्रति रहम का भाव रखते हैं, वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ही काम करके आपको देंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
1: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
0: Renew?
1: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
0: What better way to celebrate than with something timeless?
1: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
4: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
7: बॉम्बे एक्सप्रेस एंड वैष्णव केटरर्स, द फाइनेस्ट इंडोर एंड आउटडोर केटरिंग सर्विस इन USA. लाइव कुकिंग ऑन प्रेमिसेस फॉर एंगेजमेंट्स, मैरिज, बेबी शावर, बर्थडे पार्टीज एंड अडल्ट डे केयर. We make fresh farsan and sweets in USA. Also providing daily tiffin services with delivery in New Jersey and New York. Call Bombay Express and Vaishnav Caterers today at 732-986-6241. Or visit 2849 Woodbridge Avenue, Edison, New Jersey.
8: Positivity कोई location थोड़ी है कि map पे डाला और पहुंच गए. It's a journey. चलो इस journey पे with Mirchi Recharge Mornings. सुबह 6 से 8. Only on Mirchi. It's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर लोगों को सपोर्ट करो तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। ऐसे में आप ये करें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला आपको ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। इसको बोल दे नहीं होगा अगली बार, सॉरी विशाल यार। तो उस केस में आप एक पैटर्न अगर देखते हैं तो कभी ना कभी तो मैं जानता हूँ बोलेंगे ये सही नहीं है, लेकिन गुस्सा लाजमी है। ये वो है ना, एक बॉलर आ रहा है, 5 बॉल छक्के मार दिए, भाई तेरे को बोल रहा हूँ बाउंसर नहीं दे, यॉर्कर दे, यॉर्कर नहीं देगा तो फुल लेंथ डिलीवरी या गुड लेंथ डिलीवरी, वो छक्का मारेगा। तो व्हाट डू यू डू इन अ केस लाइक दैट व्हेन यू आर लीडिंग अ टीम। धोनी फील्ड में है, वो बोल रहा है तुमको, बोल रहा हूँ मैं ठीक से बॉलिंग कर, अब आप नहीं करोगे तो छक्के पड़ेंगे, सिर्फ तुम्हारा नुकसान नहीं हो रहा हमारा भी नुकसान हो रहा, बिकॉज ए टीम गेम। क्योंकि हर स्पोर्ट जो है इंडिविजुअल स्पोर्ट।
4: फिर धोनी क्या करता है?
3: धोनी जाता है उससे बात करता है, भाई क्या कर रहा है,
4: फिर वो नहीं समझता है, फिर हाँ। वो क्या करता है,
3: बोले भाई तू बॉलिंग नहीं करेगा दूसरे बॉलर को।
4: एब्सोल्युटली, बस वही तो करना है, वो अपना काम थोड़ी ना छोड़ता है। किस चीज के लिए वो फेमस है?
3: कामनेस। एक्चुअली
4: डोमिनेंस है उसकी उस चीज के ऊपर, काम है। ठीक है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि सामने वाला सच में डिप्रेस्ड है, मतलब वो चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहा है, कि जैसे आपने कहा वो आपका एडवांटेज ले रहा है। ये परखने की शक्ति होनी चाहिए। हो सकता है सामने वाला सच में दर्द में है, तब तो हमें उसको सपोर्ट करना है। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं, सामने वाला थोड़ा सा क्लेवर होने की कोशिश कर रहा है, क्लेवर बिनी श्रूड होने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास उतनी इंट्यूटिव पावर होनी चाहिए, उतनी परखने की शक्ति होनी चाहिए कि ये आपका एडवांटेज उठा रहा है। अगर वो आपका एम्प्लॉई है और उसके जीवन में कोई चैलेंज है, तो जरूरत बनती है कि उस समय हम उसको सपोर्ट करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके समझाने के बाद भी वो नहीं मान रहा है, वो एडवांटेज ले रहा है, वो आपको ग्रांटेड ले रहा है, तो जैसे वहां पर वो बॉलर चेंज करता है, काम तो नहीं छोड़ता ना, आपको गुस्सा करने की क्या जरूरत है? यू हैव गिवन अ रोल टू समबडी, वो नहीं परफॉर्म कर रहा है, आप चांस दे सकते हैं, देना भी चाहिए, एक बार दो बार तीन बार चांस देना भी चाहिए। फिर भी हम किसी के लिए कर्म तो नहीं कर सकते, हम गाइड ही तो कर सकते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

इट्स हॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Self-doubt isn't good. इसे कैसे डील करें? सुनिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: What do you do जब आपको काम रोज करवाना है और काम के आड़े आ रहा है? बुरा तो उसमें भी लगेगा ना, चाहे उसको लगे और मुझे भी लगेगा कि यार मैं करवा नहीं पाया, मैं अच्छा लीडर नहीं हूँ, या उसको लगेगा क्या यार ये विशाल बड़ा बुरा इंसान है, इसने मुझसे चेंज करा लिया, मैंने काम नहीं किया, वो नहीं देख रहा वो। तो कर्म कहीं ना कहीं बंद तो रहे हैं आपके?
1: नहीं, दोनों दो तीन चीजें हैं इसके अंदर। एक तो पहले हमें सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए।
3: अच्छा,
1: देखो दो चीजें अलग होती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक सेल्फ डाउट। इसलिए कोई भी कर्म बाहर करने से पहले उसको अंदर में चेक करना चाहिए कि आप ये किसी के साथ गलत कर रहे हैं या आप एक समय के बाद एक डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं। जब आपको कोई चीज चलानी है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, आश्रम है, हर चीज के कुछ रूल्स और डिसिप्लिन होते हैं। तो वो जो आपके लिए काम कर रहा है, आपने उसको रूल्स और डिसिप्लिन पहले से बताए हुए हैं, आज थोड़ी ना बताए हैं। जैसे किसी को आपने कहा हुआ है 26 डेज की अटेंडेंस कंपलसरी है, या ये है या जो भी है, उसके बाद आपकी पे कट होगी, है ना। अब जब उसकी पे कट होती है तो आप उसके साथ गलत कर रहे हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ, और आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो कुछ ना कुछ रूल्स तो बनने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि वो जो फलाना है उसने छुट्टी इसलिए ली थी क्योंकि उसको अचानक की कोई बड़ी बीमारी आ गई थी, तो अब आप फिर आप उसकी पे कट करते हैं तो आपको थोड़ा सा गिल्ट होगी। लेकिन तब आप एज अ लीडर आप समझते हैं कि नहीं, ये तो उसकी डिफिकल्टी का पीरियड है। सो एवरी टाइम द डिसीजन विल नॉट बी सेम। वो डिसीजन है, वो रोल है, लेकिन फिर भी दैट इज वाई मैंने जो कहा था कि कोई भी डिसीजन बाहर लेने से पहले एक रिश्ता अपने साथ होना चाहिए। वो चीज आपको कंफर्टेबल फील करानी चाहिए। अगर वो एक डिसिप्लिनरी एक्शन था और आपको लग रहा है कि वो क्लेवर होने की कोशिश कर रहा है, वो आपका एडवांटेज ले रहा है, तो आपके दिल नहीं खाएंगे।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
2: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
2: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
5: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अगर किसी को सिखाते वक्त हार्श हो जाए और उसे बुरा लग जाए तो इसमें हमें क्या करना चाहिए?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जी, मेरी बड़ी बेटी, उस समय छोटी थी, एक ही बेटी थी, तो उसको साइकिल सिखाना था। तो मैंने कहा, बेटा साइकिल के लिए हम पार्क में जाएंगे, और एक चीज मैं बता देता हूँ, मेरा ये मानना, जब तक खून नहीं निकलेगा ना, तुम साइकिल चलाना नहीं सीखोगी। बोली, क्यों? ऐसे क्योंकि जब आप गिरोगे तो थोड़ा सा खून आएगा, और उस समय मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा, साइकिल आपको खुद उठानी है, खुद चलना है। क्योंकि अगर आपको हमेशा ये महसूस रहेगा कि पापा तो हैं पीछे साइकिल पकड़ने के लिए, आप कभी साइकिल चलाना सीखोगे नहीं। तो उसके दिमाग में बैठ गया कि ही इज टीचिंग मी द हार्ड वे, बट साइकिल चलाना उसको आ गई। बट फॉर व्हाटएवर रीजन शी इज हेल्ड दैट इन हर माइंड, दिमाग में, कि मेरे पापा कठोर हैं, वो चाहते हैं कि मुझे पनिशमेंट मिले तब मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगने लग गया कि कई बार मैं जब उससे बात करता हूँ, सामने से जो रिएक्शन आता है वो ज्यादा होता है देन व्हाट इज नीडेड फॉर इट।
4: बेसिकली क्या होता है, वी वॉन्ट टू प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन फॉर फेलियर्स इन लाइफ। जरूरी नहीं होते हैं फेलियर्स होते हैं, जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो जरूरी नहीं होता है कि हर बच्चा गिरेगा और हर बच्चे का खून निकलेगा। पर हम इतना तक उसको तैयार करना चाहते हैं कि वो गिव अप नहीं करे, कि ये भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है, पर कोई बात नहीं, आप उठ करके फिर भी साइकिल चलाना सीख सकते हैं। तो हमारा भाव, हमारी इंटेंशन की प्योरिटी होती है कि हम हर हाल में कोई चीज कर सकते हैं। उतार चढ़ाव आएंगे, आप गिर भी सकते हैं, थोड़ा ज्यादा भी गिर सकते हैं। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, गिरने के बाद वो चीज छोड़ देते हैं। मैंने गाड़ी चलाई, पहला एक्सीडेंट हुआ, मैंने कहा मैं तो गाड़ी नहीं चला सकता, आई एम नॉट मेड फॉर दिस, मेरे से तो हो ही नहीं सकता। फिर वो ऐसा बिलीफ बैठ जाता है कि हम कभी भी वो चीज सीखते नहीं है।
3: बिल्कुल।
4: तो एज अ पेरेंट हम बिलीफ क्या डालना चाह रहे होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बातें आएंगी पर आप कुछ भी कर सकते हैं। शायद हमारा तरीका ठीक नहीं होता तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ भी अगर जीवन में अचीव करना है तो सफर तो करना ही पड़ेगा। पर हमारा इंटेंट वो नहीं था, हमारा इंटेंट था कि जो जर्नी है वो हमेशा सीधी सीधी नहीं होती है, पीक वैली होती है। जर्नी, लाइफ जर्नी भी तो ऐसी होती है ना, कुछ आपके अनुसार होगा, कभी नहीं होगा। कहीं आप अप्लाई करेंगे, एक्सेप्टेंस मिलेंगे, कभी कभी रिजेक्शन का लेटर भी आएगा। पर बच्चे, रिजेक्शन का लेटर का मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट स्मार्ट इनफ। रिजेक्शन का लेटर मतलब ये है, आप उठो, फिर से ट्राई करो, इस कंपनी में नहीं होगा, दूसरी कंपनी में हो जाएगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, Mirchi Mornings पर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. The party has officially started. फिलहाल अभी तुम किचन में चाय चढ़ाकर टीम्स कॉल पे गुड मॉर्निंग एवरीवन बोलने वाले हो या फिर स्कूल ड्रॉप ऑफ के बाद सीक्रेटली गाड़ी में 5 एक्स्ट्रा मिनट साइलेंस एंजॉय कर रहे हो. आई सी यू. देसी एक्सपैट लाइफ जो है ना उसका अनऑफिशियल स्पॉट यही है कि इंडिया की टाइमिंग और अमेरिका की टाइमिंग दोनों को मैच करे, दोनों को बैलेंस करे और उसके बाद शाम को खाने में क्या खाना है इसके प्लान्स बनाए. आज हम करने वाले हैं थोड़ा गॉसिप, थोड़ा मस्ती, थोड़ा नॉस्टैल्जिया एंड बिल्कुल ही फ्री में तुम्हें ढेर सारा मोटिवेशन मिलने वाला है और साथ साथ में मिर्चीदार बैंगर्स मिलने वाले एकदम गर्मा गर्म. फटाफट से मुझे फॉलो कर लो. मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La viva la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello, madam. Good evening.
2: Hi.
3: Bank je bolle ho na, wawari na iski waiye. मैडम ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
2: तो सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
3: पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गया ना।
3: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा।
2: मारूंगी ना।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया।
3: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी,
2: सॉरी नवीन, आई एम सॉरी।
4: प्यार से बोल दीजिए कुकड़ो को।
2: कुकड़ू गो।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
12: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
11: Renew?
12: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
11: What better way to celebrate than with something timeless?
12: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
13: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
14: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
16: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
17: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islip, New Jersey. Conditions apply.
18: Tera kya hoga, Kalya?
19: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
18: Ab mirchi kha.
5: Radio Mirchi. It's hot.
6: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar. Oh,

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। ये है मिर्ची मॉर्निंग्स और अब टाइम मशीन में रिवर्स का गियर लगाने वाले हैं और चलने वाले हैं 1633 में, जहाँ पर साइंटिस्ट गैलीलियो को ऑफिशियली फोर्स किया गया बोलने के लिए कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। फास्ट फॉरवर्ड टू 1815, नेपोलियन ने एम्परर की कुर्सी सेकेंड टाइम छोड़ दी आफ्टर वाटरलू। 1897 में इंडिया के चपेकर ब्रदर्स ने ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर्स पे अटैक किया इन पुणे। एंड 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस लॉन्च द फॉरवर्ड ब्लॉक और पॉलिटिक्स की प्लेलिस्ट को थोड़ा सा रीमिक्स कर दिया। 1941 में ऑपरेशन बारबोसा चेंज्ड वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री। एंड 1986 में डिएगो मैराडोना ने वो लेजेंडरी और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हैंड ऑफ गॉड गोल मारा था। एंड फिर 1978 में प्लूटो का मून शैरोन डिस्कवर हुआ था। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम अक्रॉस सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और एक्स पर एंड व्हाट्सएप पर। मेरा नंबर है 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
5: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स GIA सॉलिटेयर्स नेकलेसेस रिंग्स मरियो स्टनिंग पेंडेंट्स कृष्णा ज्वेलर्स ओक ट्री रोड इसलिन।
6: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
7: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
8: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
3: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all in one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
10: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
11: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
12: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
13: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
14: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
15: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
14: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
14: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
17: एक ही होता है।
14: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
18: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और चाय गर्म रखी है या नहीं रखी है पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म न्यूज लेकर आई हूँ। इंडिया की बैटिंग क्वीन स्मृति मंधाना ने एक और 6 सीधा हिस्ट्री के स्टैंड्स में मार दिया है। कैसे? शी इज बिकम द ओनली इंडियन टू फीचर ऑन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स लिस्ट। मतलब की दुनिया कह रही है एक्सक्यूज मी मैम, सेव सम अचीवमेंट्स फॉर द रेस्ट ऑफ अस। और बॉस, ये सिर्फ फोटो ऑप नहीं है बल्कि इस साल के हाफ ए मार्क तक स्मृति हैज बिकम टीम इंडिया वुमेन्स लीडिंग रन स्कोरर इन T20 इंटरनेशनल्स, और ऊपर से कैप्टन बनके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उनका वुमेन्स प्रीमियर लीग टाइटल भी दिलाया है। मतलब कि लीडरशिप तो मिल ही रही है, साथ साथ में रन्स भी है, ऑरा भी है। एक्सेल शीट होती तो अभी तक ओवरलोड हो जाती, हैंग हो जाती। वैसे बिग मिर्ची स्टाइल सल्यूट टू स्मृति मंधाना, प्रूविंग दैट क्वाइट कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू वर्ल्ड नोटिस करता है बाद में। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद हो ना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: poe badshah.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
7: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची का।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो देयर, मैं हूँ प्रिसिला। तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब बारी आ चुकी है वेदर का हाल चाल जानने की। फिलहाल बाहर टेम्परेचर हो रहा है 64 डिग्री फारेनहाइट एंड द स्काई इज डूइंग द क्लासिक ड्रामा क्वीन वाले मूव्स एंड मेकिंग अस फील लाइक 66 डिग्री फारेनहाइट है। सुबह से लेकर 2 बजे तक क्लाउड्स जो है उनका फुल अटेंडेंस रहने वाला है। आज बॉलीवुड टाइप की बरसात नहीं होने वाली, लेकिन थोड़ा सॉफ्टली बरसात तो हो रही है। तो कैरी योर अम्ब्रेला विथ यू एंड हेयर स्टाइल ऐसा बनाना कि अगर बिगड़ भी जाए तो तुम मैनेज कर लो। हेड्स अप, ऐसे नेक्स्ट 24 आवर्स में 21 मिलीमीटर्स की बरसात होने वाली है, अनलाइक यस्टरडे जब पूरी तरह से ड्राई था, यानी कि 0 मिलीमीटर्स की बरसात थी। आज का टेम्परेचर रेंज देख लेते हैं, 64 टू 79 डिग्री फारेनहाइट है। फील होगा 65 से लेकर 76 डिग्री फारेनहाइट तक, बिकॉज ह्यूमिडिटी और सनलाइट मिलकर कुछ ऐसा तापमान फील करा रहे हैं। वैसे आज एक इंपॉर्टेंट बात भी है, फ्लड वॉच अलर्ट है विच इज इन इफेक्ट टिल 2 PM GMT। सो अगर आज तुम कम्यूट कर रहे हो है, द बेस्ट प्लान इज टू थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हाथ में लेकर चलना और पेशेंस बेस्ट प्लान होगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा पेशेंस साथ में रखकर ही बाहर निकलना, और साथ साथ में अपना SPF 50++++ लगाना बिल्कुल मत भूलना। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड फिलहाल सुनते रहो मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स का वो टाइम जहाँ पर तुम्हें मिलती है अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले स्विट्जरलैंड में टॉक्स के दौरान यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने एक लाइट मोमेंट क्रिएट किया जब उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग हैं, एक इंडियन है और एक पाकिस्तानी है। फिर रिवील किया कि इंडियन उनकी वाइफ है और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, जिस पर रूम में काफी लाफ्टर भी हुआ। नंबर टू पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर स्ट्रॉन्ग कॉमेंट्स दिए है और वाटर सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी बताया है। इंडिया की साइड से पहले ही कहा गया है कि ट्रीटी पर उनका करंट पोजीशन अनचेंज्ड है। एंड नंबर थ्री पर क्रिकेट से रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से मूव कर सकते हैं और राजस्थान रॉयल्स के साथ टॉक्स चल रही है उनकी, और रूमर्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिर्ची पॉसिबल है कि ट्रेड कॉन्वर्सेशन भी हो जाए। क्रिकेट फैंस फिलहाल डिटेक्टिव मोड ऑन करके बैठे हुए हैं। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का थ्री विद मी प्रिसिला। मुझसे शो के अलावा बात करनी है तो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल name, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp पर मेरा number है 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: birba la burga. Mirci, burga. Hello.
2: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रही हैं
1: आप? कौन बोल रही हैं?
3: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
1: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
3: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
1: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
3: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
1: ये तो वहाँ से मेरे पास,
3: अरे यार
1: जैसे आपके पास आया कि भी अगर आप खाली बैठे।
3: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता
2: है। आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रहे हैं? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
1: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा है?
3: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार? तू लाइन में आ रहा है, मैं लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
1: है, तो
3: या बदतमीजी मत कर,
1: मुझे
3: दो मिनट। तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
2: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
1: तो अब वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots par aane wala kal ek ho jate hain.
8: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarti to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
7: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyon purani ada, bringing a global community back to its home.
8: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
10: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
11: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
12: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
13: Oak Tree Road Low, best diamond jewelry kosam search is Sunara, Krishna Jewelers Me, exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, Mario stunning pendants, Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Iselin.
15: Duniya mein sirf do tarah ke log hove hain, wolf aur sheep. Main wolf hoon. To kya hai?
16: Wolf ki beti, wolf hi hoti hai sir.
15: Hamari ekloti.
17: Alpha.
18: The YRF Spy Universe gets its most lethal weapon, Alpha. Hunting in US and Canada cinemas from 3rd July. A Yash Raj Films release.
19: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक।
11: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
17: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
20: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर गर्मा गर्म एंटरटेनमेंट। रिपोर्ट के हिसाब से टेलर स्विफ्ट मे हैव इनवाइटेड ब्लेक लाइवली टू हर वेडिंग एज अ वे टू स्मूथ थिंग्स ओवर एंड क्लोज द चैप्टर ऑन देयर रिपोर्टेड फ्रेंडशिप ड्रामा। बज ये भी कह रहे हैं कि टेंशंस अलेजेडली तब स्टार्ट हुए जब टेलर रिपोर्टेडली डिडंट लव गेटिंग पुल्ड इनटू ब्लेक्स लीगल सिचुएशन। और प्राइवेट टेक्स्ट के एक निकनेम मोमेंट ने भी इंटरनेट को डिटेक्टिव बना दिया है। ऑनेस्टली इट्स प्रिटी रिलेटेबल। हर देसी फ्रेंडशिप में एक ऐसा फेज आता है जहां पर पहले रील्स भेजी जाती है धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, फिर उसके बाद सीन जोन पर ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये सारी प्लानिंग होती है, यार अगले महीने मिलते हैं, अगले महीने पक्का प्लान बनाते हैं। इसीलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी कभी क्लोजर कम्स थ्रू कॉन्वर्सेशन। अगर दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन ही बंद हो जाएगी तो क्लोजर कैसे आएगा। एंड स्पीकिंग ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स एंड वेडिंग्स, तनिष्क लेकर आए तुम्हारे लिए फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, जहां पर तुम अपना पुराना गोल्ड ले जाकर उसको एकदम स्टाइलिश डायमंड में एक्सचेंज कर सकते हो। और उस गोल्ड को एक्सचेंज करने के लिए तुम्हें $5 पर ग्राम एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। और अगर तुम्हारा पुराना वाला गोल्ड 9 कैरेट से ऊपर है तो एक्सचेंज कराने पर तुम्हें 0% डिडक्शन भी पे करना पड़ेगा, यानी कि कुछ नहीं पे करना है। ऑफ कोर्स कंडीशंस अप्लाइड है। फिलहाल मुझसे बातें करना चाहते तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग माय मिर्ची फैमिली, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। ये है मिर्ची मॉर्निंग्स और अब वो मोमेंट आ चुका है जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है, यानी कि अगर तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू। और अब पता करते हैं कि तुम्हारे साथ आज तुम्हारे सेलिब्रिटी बर्थडे ट्विंस कौन कौन है। यू शेयर योर डे विद मेरिल स्ट्रीप, एक्टिंग की GOAT लेवल ऑफ एनर्जी। साथ साथ में यू हैव थलापति विजय, जो सुपरस्टार तो है ही, अभी रिसेंटली तमिलनाडु के CM भी बन चुके हैं। सिंगर स्क्वाड से यू हैव सिंडी लॉपर, ब्रूस कैंपबेल एंड रेडियो एंड टीवी फेस कार्सन डैली। मतलब आज अगर तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो तुम ऑलरेडी ओवर अचीवर हो ही। वैसे बर्थडे वाले लोग सेलिब्रेट करो लाउडली, केक खाओ एक्स्ट्रा कैलोरी इसके साथ क्योंकि आज काउंट नहीं होती। और साथ में मुझे शाउट आउट भेजो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, इंस्टाग्राम और एक्स पर एंड व्हाट्सएप पर। मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
0: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
3: पहले भी मैं तुमसे मिला।
4: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra. Vishal Mishra.
0: Jetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
8: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची का।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। अब सुनने वाले हो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
2: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,200, $4,200 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस पिछले हफ्ते से अपवर्ड ट्रेंड ऊपर चले गए हैं, और इससे पहले और ऊपर जाए आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें, जिसमें 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड। आप आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी हिडन फी के, और 9 मंथ्स में इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं। आइए मिलके इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में विद द टीम ऑफ rajjewels.com। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
1: एंड देयर यू गो, गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट तो तुम्हें पता चल चुका है, लेकिन क्या तुम्हें पता है मुझसे इंस्टाग्राम और एक्स पे तुम बातें कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट करने के लिए 9033 मिर्ची इज द नंबर, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello there, my Mirchi family. मैं हूँ Priscilla, तुम्हारे साथ में. सुन रहे हो Mirchi Mornings. और आप सुनने वाले हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है.
2: Mirchi, hour got three.
1: सबसे पहले UK Prime Minister Keir Starmer announced that he is stepping down and said he will support a smooth transition to the next leader. This means the UK could see yet another PM in pretty short span of years. And number two per, in Texas, an Indian origin homeowner said he removed Lord Ganesha idol after concerns raised during the home selling process. The story has sparked discussions online around personal expression, comfort and housing experience. And number three per, Turkey's World Cup journey ended after FIFA's tie break rule came into play. Head-to-head results mattered before goal differences. Yani ki sirf score nahi, kis se haare ho aur kis se jeete ho, wo bhi रिपोर्ट कार्ड में काउंट होता है. फुटबॉल फैंस एवरीवेयर कलेक्टिवली सेइंग कि रूल बुक भी पढ़नी पड़ती है क्या. दैट्स इट फॉर Mirchi Mornings पर Mirchi आवर का 3 विद मी Priscilla. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है Mirchi Priz, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033 Mirchi, दैट्6472444. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: हेलो मिस्टर विपुल, मैं से बोल रहा हूँ। आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स। तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
1: इनबॉक्स चाहिए, इनबॉक्स कैसा मतलब?
0: मैं आपको वही समझा रहा हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना। तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा। अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
1: नहीं नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
0: हाँ बताइए।
1: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा, वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना।
0: नहीं, वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
1: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
0: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
1: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना। अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
0: बिल्कुल
1: से कम मुझे
0: बिल्कुल
1: मालूम
0: से होना बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: जा कहाँ रहा है?
0: नहीं, वो जा कहाँ रहा है, जा यही रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए। अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
1: मेरे प्राइवेट SMS है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको?
0: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
1: यार क्या बात कर रहा है, मतलब
0: नॉन वेज SMS क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी को जरूरत है। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
1: चल
0: नहीं नहीं, आपने फॉर्म भरा था, सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए, सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
1: बिल्कुल
0: क्या बात कर रहे हैं यार, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
1: हेलो
0: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार।
1: आपको से फोन मत करियो, मैं हाँ? इनबॉक्स बना दूंगा, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्या क्या क्या क्या यार, बात सुनिए आप मेरी। मैं आपसे सिर्फ एक बात, एक बार विपुल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
6: I am not going to bed with you ever again.
5: But why? What did I do?
6: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
5: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
6: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
5: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
6: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
5: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
8: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
9: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
8: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
15: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
14: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
14: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
14: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स और अब सुनने वाले हो राशि जोन पार्ट वन।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: इरीज यानी कि मेष राशि, बॉस एनर्जी थोड़ी लो वॉल्यूम पर रखो आज। लेट पीपल कनेक्ट टू यू डायरेक्टली लाइक वाईफाई। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, बेटा दुनिया सेव करने निकले थे लेकिन पहले खुद फन तो कर लो। वीकेंड वाइब्स एक्टिवेट करो, चाय, फ्रेंड्स, फ्रेश एयर, ये सब कुछ चलने वाला है। लकी कलर फॉर यू इज पिस्टाशियो, लकी नंबर इज 28। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज सीईओ मोड ऑफ करो, टीम वर्क से ज्यादा माइलेज मिलने वाला है। जेंटल रिमाइंडर, हेल्पफुल पीपल आर नॉट सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। लकी कलर इज आइस मिंट, लकी नंबर इज 9। कैंसर यानी कर्क राशि, सन तुम्हारी साइड पे है, कॉन्फिडेंस फुल चार्ज करो, जो गोल पहले इम्पॉसिबल लग रहे थे आज उसको दोबारा से डीएम भेजो। लकी कलर इज सनराइज पीच, लकी नंबर इज 22। लियो यानी कि सिंह राशि, ड्रामा मत करो, कम बैक करो, चैलेंज को ट्रेलर समझो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आई एम गेटिंग बिग ब्रेक थ्रू एनर्जी फ्रॉम यू। लकी कलर इज गोल्ड, लकी नंबर इज 31। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, प्रोडक्टिविटी का प्रेशर कुकर ऑन है, जो काम करना है अब भी कर लो और हाँ, दूसरों के डाउट्स को रिसाइकल बिन में भी डाल दो। लकी कलर इज सिल्वर, लकी नंबर इज 19। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट वन। बाकी बची 6 राशियों को लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में, तब तक तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स एंड ऑफ कोर्स मुझे जाकर फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: It's 10:30 AM. Mirchi Time Check.
1: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
4: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
3: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
5: अभी न जाओ छोड़ कर।
4: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: राशि जोन पार्ट टू लेकर आ चुकी हूँ मैं, बोले तो प्रिसिला और मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड लेट्स फाइंड आउट आज तुम्हारे सितारे क्या कह रहे हैं।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लिब्रा यानी तुला राशि, और स्टैक्ड लग रहे हैं, राइट? परफेक्ट। तुम चैलेंज मोड में बेस्ट काम करते हो। माइंडसेट को कॉफी पिलाओ थोड़ा सा। लकी कलर इज मलबरी, लकी नंबर इज 18। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, अगर किसी दोस्त का जीपीएस गलत डायरेक्शन पर ले जा रहा है तो डिलीवरी सॉफ्ट रखो, ऑनेस्टी स्ट्रांग रखो, फ्यूचर यू को थैंक यू मिलने वाला है। लकी कलर इज मिडनाइट प्लम, लकी नंबर इज 11। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, समवन सेइंग नाइस थिंग्स, सस्पिशियस मत हो जाओ। कभी कभी कॉम्प्लीमेंट स्कैम नहीं होते हैं, एक्चुअल में रियलिटी होते हैं, रिसीव देम विद ग्रेस। लकी कलर इज कॉपर कलर, लकी नंबर इज 25। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, हर मीटिंग तुम लीड नहीं करने वाले हो, एंड गेस व्हाट, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आज डेलीगेशन इज इक्वल टू सेल्फ केयर। लकी कलर इज फॉरेस्ट स्टील, लकी नंबर इज 4। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, फन मोड को थोड़ा सा पैक करो एंड वर्क मोड को स्पॉटलाइट में लेकर आओ। एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखो, इंक्लूडिंग अपने खुद से। लकी कलर इज इंडिगो, लकी नंबर इज 37। पाइसीज यानी कि मीन राशि, मोटिवेशन का चार्जर मिल गया है, एनर्जी कंटेजियस है। तुम स्टार्ट तो करो और लोग तुम्हें फॉलो करते जाएंगे। क्रिएटर मोड अनलॉक हो चुका है तुम्हारा। लकी कलर इज रोज क्वार्ट्ज, लकी नंबर इज 13। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट टू। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। इंस्टा और एक्स पर मुझे ढूंढोगे तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2। Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: Listener, mein back-to-back gana sunega. Back-to-back gana sunega.
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
8: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो जी, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और बस ऐसे ही मेरे जाने का टाइम आ चुका है, यानी कि मिर्ची मॉर्निंग्स पर से मुझे अब अलविदा, टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन जाने से पहले कुछ बातें करना तो बनता है, राइट? सो इंडिया के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने एक सिंपल बट सॉलिड बात बोली है अबाउट फुटबॉल ड्रीम्स। जब लोग पूछते हैं इंडिया फीफा वर्ल्ड कप में क्यों नहीं है, उनका आंसर था पहले रेगुलरली एशियन कप में होना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन पहले और स्पॉटलाइट बाद में मिलेगी। एंड ऑनेस्टली क्या ही लाइफ लेसन है ये जो एक्सपैट लाइफ है, वो भी तो यही करने में गुजर जाती है। पहले ड्राइवर्स लाइसेंस लो, फिर क्रेडिट स्कोर लो, फिर कॉस्को मेंबरशिप लो, फिर दुनिया जीतने निकलते हैं। कभी कभी हम डायरेक्टली फाइनल डेस्टिनेशन देखते हैं और भूल जाते हैं कि गूगल मैप्स भी बोलता है कंटिन्यूअस स्टेट फॉर 500 माइल्स। सो आज का मिर्ची टेक अवे है, बड़ा ड्रीम रखो लेकिन स्मॉल विंस को भी हाई फाई देते हुए आगे बढ़ते जाओ, दैट्स प्रीटी इम्पोर्टेंट। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और अब मेरे जाने का टाइम है, जाते जाते तुम्हें याद दिला दो कि मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम और एक्स पर, वहां पर हम खूब गप्पे मारने वाले हैं। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर अगर मुझसे कनेक्ट करना है तो मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647 to 44. Stay tuned and stay hot.

0: बेचारा मंडे कितने टॉर्चर झेलता है यार हमारे। हमें लगता है कि ये हमें टॉर्चर कर रहा है, लेकिन हम मंडे को टॉर्चर कर देते हैं यार। कितने ताने देते हैं, कितना बुरा भला कहते हैं, इसके आते के साथ ही मुंह बना लेते हैं और मंडे को बेमंडे बोल के एकदम ट्रॉमा में डाल देते हैं, है ना। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये मंडे है या फिर बिजली का लंबा चौड़ा बिल।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और नहीं तो क्या यार, बेचारे मंडे को हम कैसे ट्रीट करते हैं ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ अलग किया जाए। देखो मंडे के दिन काम तो सभी करते हैं, क्रिप तो सभी करते हैं, लेकिन आज मिड डे मोहब्बत पर ना हम काम की बात करेंगे और ना हम क्रिप करेंगे, हम आज मंडे के दिन मस्ती की पाठशाला करेंगे। अरे यार बचपन में आपको याद है कितने खेल खेला करते थे हम, कितने खिलक्कड़ हुआ करते थे, खिलाड़ी हुआ करते थे। अक्षय कुमार तो कम खिलाड़ी हैं, हम खिलाड़ियों के खिलाड़ी हुआ करते थे, है ना। तो आज मस्ती की पाठशाला में उन्हीं सारे खेलों को हम याद करते हुए बे मंडे को एकदम मन वाला मंडे बना देंगे। काय बोलतास। तो बस फिर मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को मैं 90s के गियर में डाल रही हूँ। आप भी चेयर अप हो जाओ और इस बे मंडे को मन का वनडे कर दो यार। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
2: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
4: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं.
5: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मटेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी.
4: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले.
6: अभी न जाओ छोड़ कर.
5: 28 June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
7: અમેરિકામાં શ્રેષ્ઠ ઇન્ડોર અને આઉટડોર કેટરિંગ સેવા, એન્ગેજમેન્ટ, લગ્ન, બેબી શાવર, જન્મદિવસ પાર્ટી અને એડલ્ટ ડે કેર, તમારા સ્થળ પર લાઇવ કુકિંગની સુવિધા. અમે અમેરિકામાં તાજું ફરસાન અને મીઠાઈ બનાવીએ છીએ. અમે ન્યૂ જર્સી અને ન્યૂયોર્કમાં ડિલિવરી સાથે ટિફિન સેવા પણ આપીએ છીએ. આજે જ બોમ્બે એક્સપ્રેસ અને વૈષ્ણવ કેટરર્સને કોલ કરો એટ 732-986-6241 ઓર વિઝિટ 2849 વુડબ્રિજ એવન્યુ, એડિસન, ન્યૂ જર્સી.
8: दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप. मैं वुल्फ हूँ. तो क्या है?
9: वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर,
8: हमारी इकलौती
10: अल्फा.
11: द YRF स्पाई यूनिवर्स गेट्स इट्स मोस्ट लीथल वेपन अल्फा. Hunting in US and Canada cinemas from 3rd July. A Yashraj Films release.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज मिडे मोहब्बत पर मंडे वाले दिन ना मस्ती की पाठशाला चल रही है और बच्चों कैसे क्या आता है कैरम। हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा और मंडे तो वो सभी काम कर रहे होते हैं यार। मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम काम ना करके आराम करें यानी कि मस्ती की पाठशाला लेकर आए यार और बचपन के उन खेलों को याद करें जो कि हमने बड़े चाव से खेले हैं जिनमें से एक आता था कैरम जो अक्सर हम गर्मियों की छुट्टियों में जरूर खेला करते थे। बेचारे जो कैरम बोर्ड था ये धूल खाया करता था पूरे साल और जब गर्मियों की छुट्टियां आती थी ना तो भाई इसकी तो बहुत ही वक्त बढ़ जाया करती थी कूलर के सामने बैठ के जो हम दिन दिन भर कैरम खेला करते थे। क्या मजे आते थे यार उन दिनों में भी और हमारे घर वाले भी खुश रहा करते थे कि चलो भाई सही है सारे के सारे बच्चे एक ही कमरे के अंदर बंद हैं तो हमें ना कोई टैब नहीं रखना पड़ेगा कि कौन कहां गया। दिन के टाइम पर मामूजन आते थे और हम बच्चों को कह के जाते थे कि सब के सब कूलर के अंदर ही रहना बाहर निकलने की जरूरत नहीं है और हमारे साथ कैरम हुआ करता था और हम हुआ करते थे बस और क्या चाहिए। हाँ वो अलग बात है कि हमारे घर की रसोई से थोड़ा बहुत रसना भी आ जाया करता था थोड़ी देर के अंदर और जिंदगी में और क्या चाहिए था यार। इनफैक्ट कभी कभी तो मुझे लगता है कि आज भी तो क्या ही चाहिए बस कैरम की वो रानी चाहिए होती है रानी के बाद एक कवर चाहिए होता है। और आपको याद है कैसे लक्ष्मण रेखा खींच दिया करते थे हम जब भी किसी दूसरे की रानी निकलने की बारी होती थी या कवर मिलने की बारी होती थी तो बस लक्ष्मण रेखा खींच दिया करते थे और उस पर लड़ाइयां हो जाया करती थी कि नहीं तूने वहां पे उंगली मारी इस वजह से मेरी गोटी नहीं गई है तूने कुछ किया है। फिर थोड़ी देर में हम ऊपर से लक्ष्मण रेखा खींच रहे होते थे यानी कि लक्ष्मण रेखा 2.0 हो जाया करती थी जिसको कि ऊपर से हवा में खींचा जाया करता था और तब भी अगला कहा करता था तूने जरूर कुछ किया है तूने गोटी मूव करी है पक्की बात है। वो कैरम के बोर्ड पर पाउडर लगाना गोटियों को जमाना और फिर उनको गिराना इन सारी चीजों में जो सुकून मिला करता था ना आज तो कुछ भी कर ले कितनी ऑनलाइन शॉपिंग क्यों ना कर लें कितना ही खुद को पैम्पर क्यों ना कर लें वो वाला सुकून नहीं आता यार वो वाला सुकून नहीं आता जो फ्री में कूलर के सामने बैठ के एक कैरम बोर्ड पर आ जाया करता था है कि नहीं। आपके कौन से फेवरेट गेम्स हुआ करते थे बचपन के जरा मुझे डीएम करके बताना और माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कारोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव। कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2। अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu. Vishal Mishra, live in New Jersey, Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
9: It's 11:30 AM. Mirchi time check.
1: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिडडे मोहब्बत पर चल रही है मस्ती की पाठशाला ऑन अ मंडे, और बच्चों जैसे छुपन छुपाई। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। हाय, वो छुपन छुपाई के दिन याद है आपको? आज तो हम कितनी कोशिश कर लें अपनी प्रॉब्लम्स के साथ छुपन छुपाई खेलने की, नहीं खेल सकते। बचपन में खूब खेला करते थे, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स के साथ नहीं, अपने कजिन्स के साथ और दोस्तों के साथ खेला करते थे। यार कितना मजा आता था ना यार, कितनी देर के लिए हम छुप जाया करते थे, गायब हो जाया करते थे। और कितनी बार तो ऐसा होता था कि एक बच्चा ऐसा छुपता था कि मिलता ही नहीं था। और कुछ बार तो ऐसा भी हुआ है कि पढ़ाई का टाइम हो जाया करता था, होमवर्क का टाइम हो जाया करता था, तो पूरी पब्लिक डिस्पर्स और वो बच्चा अभी भी छुपा हुआ ही है। उसको बहुत लेट पता लगता था कि उस पर सबने गिव अप कर दिया है बॉस। और फिर वो बड़ा प्राउडली निकल के आया करता था कि है मुझे तो कोई पकड़ ही नहीं पाया। लेकिन मजेदारी वाली बात ये थी कि जब हम छुपन छुपाई खेला करते थे तो हम धप्पी कहा करते थे और आई स्पाइस कहा करते थे। वेल, वो आई स्पाइस तो होता ही नहीं था यार, बड़े हुए तो समझ में आया दैट वाज आई स्पाई। और धप्पी का क्या मतलब था मुझे तो आज भी नहीं समझ में आया। हम तो आज भी उसको ऐवें इस्तेमाल कर लेते हैं, जहां किसी की कोई चोरी पकड़ी जाती है हम क्या देते हैं, धप्पी। क्या कर रहे थे? बट इस धप्पी में अलग एक मोहब्बत नहीं साउंड करती है? कितना वार्म लगता है धप्पी कहना, ऐसा लगता है जैसे ये धप्पी नहीं है बचपन की पप्पी है। कहाँ कहाँ नहीं छुपे यार छुपन छुपाई खेलते हुए, ऐसी ऐसी जगहों पे छुपे हैं ना कि जहाँ पर हमारे कपड़ों में चूने लग गए, हमारी कोनियों में चूने लग गए, लेकिन फिर भी ना खेलने से बाज नहीं आया करते थे। और हमारा बचपन तो ऐसा ही हुआ करता था यार, जब हम शाम को खेल के आया करते थे तो चूने में ही सने हुए होते थे, इतने कोनों में घुसते थे और चूने लगा लिया करते थे ना अपने ऊपर कि पूछो ही मत। आज गाड़ी में, लाइफ में, हर कहीं एडजस्ट करने में हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन बचपन में छुपन छुपाई खेलते हुए छोटी सी छोटी जगह पर ऐसे घुस जाया करते थे जैसे इंसान नहीं बिल्ली का बच्चा है हम। और आज मिडडे मोहब्बत पर छुपन छुपाई की बड़ी याद आई, आपको आई कि नहीं आई? डीएम करके मुझे बताना एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ए बाय द वे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इज मिर्ची सारा, स्टे ट्यून्ड।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 12 p.m. Mirchi time check.
2: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
3: Surin ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
4: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1.
5: बॉलीवुड के लिए फ्राइडे होता है उनका जजमेंट डे. हर फ्राइडे बॉलीवुड को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक नया पोस्टर, एक नया ट्रेलर, एक नया गाना, एक नई कहानी. लेकिन हर साल सिर्फ कुछ ही चीजें वक्त की कसौटी पर टिकती हैं, बाकी सब कंटेंट बनकर रह जाती हैं. और मुझे पिछले कुछ दिनों से एक सवाल बहुत परेशान कर रहा है. हमारे पास आज सब कुछ ज्यादा है. We've got bigger budgets, we've got bigger marketing, we've got bigger platforms. और फिर भी क्या हम वैसे कल्चरल मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं जो 10, 20, 25 साल बाद भी याद रह जाएंगे? या हम सिर्फ अगले फ्राइडे तक सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं? आज के काउंटडाउन में इसी बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं. म्यूजिक भी होगा, मेमोरीज भी होंगी और कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब शायद बॉलीवुड को खुद ढूंढने पड़ेंगे. हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन. एंड इस एपिसोड का पहला गाना है उस फिल्म से जिसे तारीफ तो मिल रही है पर बॉक्स ऑफिस की मोहर नहीं. मैं वापस आऊंगा बाय इम्तियाज अली एंड गाना नंबर 20 पर है इश्क मस्ताना विच रियूनाइट्स मोहित चौहान विद एआर रहमान एंड इरशाद कामिल फॉर एन इम्तियाज अली फिल्म. ये तो हमने पहले भी देखा है.
6: नंबर 20.

वेलकम टू द जंगल। और अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो एक बात समझ आ गई होगी, आज की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, अटेंशन है। हर प्लेटफॉर्म आपको बुला रहा है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, रील्स, पॉडकास्ट, गेमिंग, सब आपके वक्त के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता था कि फिल्म्स अब और बेहतर हो जाएंगी और हिम्मत वाली होंगी, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है। लेकिन अजीब बात यह है, कई बार लगता है कि इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इस हफ्ते लगान के 25 साल पूरे हो गए हैं और उसने मुझे एक बात याद दिला दी, 2001 सिर्फ एक अच्छा साल नहीं था, 2001 एक स्टेटमेंट था। लगान तो आई थी, लेकिन उसी दिन उसके साथ आई एक और फिल्म।

एक फिल्म ने दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तानी कहानियां ऑस्कर तक पहुंच सकती हैं। एक फिल्म ने थिएटर्स में ऐसी भीड़ जमा की जो आज भी रिकॉर्ड बुक्स में जिंदा है, और एक फिल्म जिसने बॉलीवुड को ग्लोबल फैमिली इवेंट बना दिया। सोचिए, तीन फिल्में, तीन अलग अलग फिल्म मेकर्स, तीन अलग अलग ऑडियंसेस और तीन अलग अलग विजन्स, और तीनों एक ही साल में आई। अब सवाल यह है, जब 2001 में यह मुमकिन था तो 2026 में हम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, ज्यादा स्क्रीन्स है, ज्यादा मार्केटिंग है, ज्यादा डेटा है, लेकिन क्या हमारे पास उतनी ही कन्विक्शन है? क्योंकि क्लासिक्स बजट से नहीं बनते, क्लासिक्स तो बनते हैं जब फिल्म मेकर्स ट्रेंड फॉलो करना छोड़कर ट्रेंड क्रिएट करते हैं। और शायद इसी भागदौड़ में कुछ फिल्में आती हैं और कुछ नोटिस हुए बिना निकल जाती हैं। ऐसी एक फिल्म है कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता। उसका एक गाना मिर्ची टॉप 20 में डेब्यू कर रहा है। इट्स अ फील गुड हैप्पी गो लकी सॉन्ग सॉन्ग बाय श्रेया घोषाल। गाना नंबर 18 है नब्ज नब्ज। नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
6: पहले भी मैं तुमसे मिला।
7: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नन अदर देन विशाल मिश्रा।
8: विशाल मिश्रा
5: Chetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com
9: and SaiUSAInc.com.
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: जय गुरुदेव, गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
13: दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। तो क्या है?
14: वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर,
13: हमारी इकलौती
15: अल्फा।
5: The YRF Spy Universe gets its most lethal weapon, Alpha. Hunting in US and Canada cinemas from 3rd July. A Yash Raj Films release. कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
16: अब मिर्ची खा।
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
19: नंबर 10।

सर्टिफाइड बैंगर बॉस, वल्लाह वल्लाह वल्लाह। और मुझे लगता है कि कॉकटेल 2 क्वाइटली इस साल की सबसे एक्साइटिंग साउंडट्रैक्स में से एक बन रही है। पहले आया जब तलक, देन यू हैव द सॉफ्ट तुझको, एंड फिर आया माशूका, और अब आ गया वल्लाह। चार गाने, चार अलग अलग मूड्स, लेकिन एक ही बात कॉमन, पर्सनैलिटी। Now, Hardy Sandhu इस गाने में गाते कम हैं, स्टाइल ज्यादा छोड़कर जाते हैं, और प्रीतम दा ने जो ग्रूव बनाई है वो सीधा स्पीकर से निकलकर हमारे खून में घुस जाती है। ये उन गानों में से है दैट यू कैरी विद योरसेल्फ। लेकिन गाने और फिल्मों में एक फर्क होता है। एक फिल्म का साउंडट्रैक आप इंस्टिंक्ट से बना सकते हो, लेकिन फिल्म स्क्रिप्ट से जीतती है या फिर हारती है। और इसलिए मुझे शाहिद कपूर की कही एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। शाहिद ने हाल ही में कहा कि अब वो स्क्रिप्ट्स सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर, अपने सिक्स सेंस पर डिसाइड नहीं कर रहे। नरेशन के वक्त तीन और लोग उनके साथ रूम में बैठे होते हैं, यानी कि तीन और ओपिनियंस, तीन और पर्सपेक्टिव्स। और शायद ही कमजोरी नहीं है, शायद इसे ही मैच्योरिटी कहते हैं। क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट लोग वो नहीं होते जो हमेशा अपनी बात लोगों से मनवाते हैं या खुद मानते हैं। सबसे इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो समझ जाते हैं कि यार दुनिया बदल रही है, और बॉलीवुड की ऑडियंस वो तो हर रोज बदल रही है। इसी सवाल से वरुण धवन भी जूझ रहे हैं। डेविड धवन और वरुण धवन की जोड़ी को ऑडियंस ने कभी सर आंखों पर बिठाया था, लेकिन क्या वो फॉर्मूला आज भी उतना ही काम करता है? बॉक्स ऑफिस के नंबर्स और चार्ट्स दोनों फिलहाल सवाल पूछ रहे हैं। नंबर 6 से फिसल कर नंबर 9 पर आ गया है ये गाना, व्याह करवा दो जी, फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ है जवानी तो इश्क होना है। नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
4: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग,
5: ईकेजी एंड फ्लेबोटमी,
4: मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स.
3: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स. ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस. फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu.
6: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
7: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
6: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
9: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजिलिन.
10: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर.
11: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स. कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इजलिन.
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, the king of mortgage industry.
13: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
14: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
15: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
16: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
15: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Only on Mirchi. It's hot.
17: Number 8.

मुझे ऑनेस्टली इस गाने के चार्ट्स पर ऊपर चढ़ने से बिल्कुल हैरानी नहीं होती, क्योंकि कुछ फॉर्मूलास कभी पुराने ही नहीं होते। वन कैची हुक, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा सा स्वैगर और पब्लिक का कनेक्शन तुरंत बन जाता है। दैट इज ऊंचा लंबा कट फॉर यू। लेकिन 2026 के पहले 6 महीनों ने सच से मुलाकात करवा दी थी हम सबकी। अरिजीत सिंह ने साल की शुरुआत में ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, ये सबको याद है। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जाने से पहले पूरा साल अपने नाम लिख कर जाऊंगा। सबसे पहले ही गेव अस दिस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। नंबर 7।

एक ऐसा गाना जो आज भी चार्ट्स की धड़कन बना हुआ है, इस हफ्ते नंबर 7 पर है। एंड देन आई एक फिल्म कॉल्ड 21, जिसमें अरिजीत गेवास सितारे।

0: फिर से, और ये सब रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद। अजीब बात है ना, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद धीरे धीरे नजरों से ओझल हो जाते हैं। अरिजीत सिंह रिटायरमेंट के बाद और ज्यादा नजर आने लगे हैं, शायद इसलिए क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सिंगर्स की नहीं रहती, वो एक जनरेशन की आवाज बन जाती हैं। तो अगर ये अरिजीत सिंह का फेयरवेल लैप है तो बॉलीवुड ने इससे खूबसूरत फेयरवेल शायद ही कभी देखा होगा। अब देखना यह है कि क्या उनका अगला मास्टरपीस नंबर वन की रेस में और तेजी से दौड़ सकता है। स्लोली एंड स्टेडिली, दिल जीतते हुए। This one is from Cocktail 2. It's the biggest love anthem of this summer. Gana number 6 hai Tujhko with Arijit Singh and Sunidhi Chauhan.
1: Number 6.

कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके आते ही समझ आ जाता है कि उनका हिट होना तय था। 3 हफ्ते पहले चार्ट्स पर एंट्री की माशुका ने और आज इट शॉट अप स्ट्रेट नंबर 2। माशुका इस वक्त वही कर रहा है जो हर बड़े समर एंथम को करना चाहिए, गाड़ियों में बज रहा है, रील्स पर चल रहा है और लोगों के दिमाग में बिना परमिशन के घुस चुका है। लेकिन मुझे राघव चैतन्य की एक और बात बहुत पसंद है। वो सिर्फ गाना गाता नहीं है, वो गाना आपके अंदर उतार भी सकता है और गाने को भी उतार सकता है, वो भी उसके पूरे मेकअप के बिना। कॉकटेल 2 की कहानी इज सेट इन इटली और अगर आप कभी इटली गए हैं तो आपने वो मंजर जरूर देखा होगा या एटलीस्ट यूट्यूब पर देखा होगा। एक सिंगर, एक गिटार और पूरी भीड़ चुपचाप उस बंदे को सुन रही होती है। इट्स ए टिपिकल इटालियन सेटिंग और राघव ने माशुका का एक ऐसा ही स्ट्रिप डाउन वर्जन बनाया है। ना बीट्स है, ना प्रोडक्शन है, ना इलेक्ट्रॉनिक लेयर्स है तो सिर्फ राघव की आवाज एंड द फील्स।

यही तो असली टेस्ट होता है, जब गाने से सब कुछ निकाल दो और फिर भी गाना बचा रहे। लेकिन मिर्ची रॉ 20 का क्राउन अभी भी किसी और के पास है। पिछले लगभग 5 महीनों से हर चैलेंजर को रोककर, हर नई एंट्री को देखकर बस मुस्कुराते हुए ये गाना टिका हुआ है नंबर 1 पर। फिर से इट्स जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुबंती बागची, दिस इज शरारत, एंड अब हो गए इसे पूरे 18 हफ्ते। नंबर 1।

0: बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 के इस एपिसोड को यहीं पॉज करते हैं। वेल, नए गाने आएंगे, नए ट्रेंड्स भी आएंगे और नए स्टार्स भी आएंगे, लेकिन अगले एपिसोड पर मिलकर देखेंगे इनमें से कितनी चीजें बाकी टिकती हैं। तब तक के लिए म्यूजिक लाउड रखिए, ओपिनियंस अपने रखिए। Until the next time we meet, this is Suren, over and out.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Oh no!
5: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स। Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

है तू अक्सर, पूरी कयामत होगी ना छोड़ी है कोई कसर। टॉप टू बॉटम मार्क्स तुझे दिए मैंने 10 out of 10, क्यों नहीं चाहिए चल ओके देन। भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल्ली, तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल।

रीमिक्स वाला ओरिजिनल गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और जिस ओजी गाने की हम बात कर रहे हैं ना, इसके पता नहीं कितने रीमिक्स एंड रीमिक्सेस बने हैं। एक तो वेब सीरीज आई थी ना जिसमें भूमि पेडनेकर और ईशान खट्टर थे, रॉयल्स करके, उसमें भी ये गाना यूज हुआ था। लेकिन द मोस्ट प्रोमिनेंट रीमिक्स इस गाने का वॉज रिलीज इन 2002-2003, डीजे अकील का रीमिक्स। और ऑडियो से ज्यादा इसका वीडियो आपको शायद याद होगा 90s के बच्चों को खास करके, बिकॉज बहुत आफतें उठानी पड़ती थी इसका वीडियो देखने के लिए, घर वालों से छुप छुपा के देखना पड़ता था। याद है 90s 2000 में वो जो फोन हॉटलाइंस चलती थी जिसपे कॉल करके आप दोस्ती कर सकते थे, वो वाला थीम था इस वीडियो का। पिंक ड्रेस में तीन मॉडल्स होती है और फिर वो एक बोलती है, अकेले हो दोस्ती करोगे, एंड देन दिस सॉन्ग प्लेज, जो ओरिजिनली है 1982 की फिल्म ये वादा रहा से। इसे कंपोज किया है आरडी बर्मन ने, लिखा है गुलशन बावरा ने, ब्यूटीफुली सॉन्ग बाय किशोर कुमार एंड आशा भोसले। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहे।

0: फिल्म आपकी कसम में एक सीन था जहां पे राजेश खन्ना को संजीव कुमार को एक थप्पड़ मारना था। मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो फिल्म में सिचुएशन कुछ यूं रहती है ना कि राजेश खन्ना ऐसे शक्की हस्बैंड होते हैं जिनको डाउट हो जाता है कि उनकी वाइफ मुमताज का उनके फ्रेंड संजीव कुमार से अफेयर चल रहा है। तो ये सीन जहां पे राजेश खन्ना को संजीव कुमार को थप्पड़ मारना था, उन्होंने काफी जोर से थप्पड़ मारा, जिसकी वजह ये थी कि किसी एक्ट्रेस ने ये रूमर फैलाया था कि संजीव कुमार और राजेश खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू का अफेयर था। तो ये तब की कोई खुन्नस, तब का कोई गुस्सा संजीव कुमार पे निकला। ऐसा शेयर किया था अंजू महेंद्रू ने एक पुराने इंटरव्यू में। बताइए, पर्दे पर हम जो सीन्स देखते थे या देखते हैं, उनके पीछे क्या क्या कहानियां छुपी होती हैं? पता नहीं सच भी होती हैं कि नहीं। खैर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: सुनो कहा, कहा सुना।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ.
4: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
5: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है. प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
6: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: શું તમે હેલ્થકેર મેળવવા વિશે ચિંતિત છો? શું તમને ખબર છે કે ન્યુયોર્ક વ્યક્તિઓ, પરિવારો અને નાના બિઝનેસ માટે ઓછા ભાવમાં હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ આપે છે? એપ્લિકેશનની ચિંતા ન કરો. SACSS એનરોલમેન્ટ સ્પેશિયલિસ્ટ તમને આ પ્રક્રિયામાં મદદ કરશે. અમારો સ્ટાફ 20 કરતા વધુ ભાષા બોલે છે અને અમે તમને હેલ્થકેર મેળવવામાં મદદ કરીશું. સાઉથ એશિયન કાઉન્સિલ ફોર સોશિયલ સર્વિસીસને કોલ કરો 718-321-7929 અથવા SACSS ઓફિસમાં રૂબરૂ મુલાકાત લો 14302 45th એવન્યુ ફ્લશિંગ ન્યુયોર્ક વરહુ માહિતી માટે કરો www.saccssny.org.
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
11: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
12: लिसनर है मैं. बैक टू बैक गाना सुनेगा.
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
14: It's 1:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
0: Purani Jeans with Charu, only on

कुछ कुछ पुराने गाने ऐसे हैं कि वो गाने तो चलो आइकॉनिक क्लासिक ब्रिलियंट हैं ही, लेकिन उनका जो म्यूजिक है ना, म्यूजिक चाहे वो बीच में कहीं आ रहा है अंतरे से पहले या एकदम वो म्यूजिक जिससे गाना स्टार्ट हो रहा है, वो अलग ही तरह का क्लासिक है। मतलब वो म्यूजिक उस गाने की पहचान बन जाता है। जैसे कि आने वाला गाना द ग्रेट गैम्बलर का दो लफ्जों की है दिल की कहानी, और अक्सर हम ना म्यूजिक डायरेक्टर्स का नाम जानते हैं कि ये गाना आर डी बर्मन ने कंपोज किया है, लेकिन उनके साथ पता नहीं कितने म्यूजिशियंस काम करते थे। कोई गिटार बजा रहा है, कोई कॉन्गो बजा रहा है, कोई मैंडोलिन बजा रहा है। तो इस गाने में ये जो आइकॉनिक मैंडोलिन ट्यून है ना बिगनिंग की, ये मैंडोलिन प्ले किया था म्यूजिशियन अरविंद हल्दीपुर जी ने। और भी कई गानों में उन्होंने गिटार प्ले किया है, मैंडोलिन प्ले किया है, बट दिस वन स्टैंड्स आउट। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: शायद तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots par aane wala kal ek ho jate hain.
4: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarti to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
3: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyon purani ada, bringing a global community back to its home.
4: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islin.
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

मासूम फिल्म का गाना ब्रिलियंटली संग बाय अनूप घोषाल जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नेशनल अवार्ड विनिंग सिंगर अनूप घोषाल जी ने मेनली बंगाली गाने गाए हैं। हिंदी गाने उन्होंने बहुत लिमिटेड गाए हैं, लेकिन जो गाए हैं क्या गाए हैं, जैसे कि ये वाला। और मैं ना बड़ी हैरान हुई जो मुझे पता चला कि ये गाना उस साल 31st फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में नॉमिनेट ही नहीं हुआ था। मासूम फिल्म को वैसे बहुत सारे अवार्ड मिले थे, लेकिन ये गाना नॉमिनेटेड ही नहीं था। नॉमिनेशन में 3 गाने शब्बीर कुमार साहब के थे, आई थिंक बेताब फिल्म के, और 2 गाने किशोर दा के थे। एक तो उनका सौतन फिल्म का शायद मेरी शादी का ख्याल, और दूसरा ये गाना जिसे एक्चुअली उस साल अवार्ड मिला था। सुनेंगे यहाँ पर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu @rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

झूठा वादा करने वाले बेवफा आशिक के नाम अर्ज किया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हाँ तो वादा तोड़ने वाले बेवफा आशिक के नाम अर्ज किया है। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। दाग देलवी साहब का शेर है ये। अच्छा, पूनम अलाबादी शायर लिखते हैं, बेवफा से भी प्यार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है, यार कुछ भी हो यार होता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
5: क्या आप हेल्थ केयर हासिल करने को लेकर परेशान हैं? क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क लोग परिवारों और छोटे बिजनेसेस के लिए कम दाम में हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करता है? एप्लीकेशन की चिंता ना कीजिए. SACSS एनरोलमेंट स्पेशलिस्ट आपको पूरी प्रक्रिया में मदद करेंगे. हमारे स्टाफ मेंबर्स 20 से अधिक भाषाएं बोलते हैं और आपको सस्ती हेल्थ केयर दिलाने में मदद करेंगे. साउथ एशियन काउंसिल फॉर सोशल सर्विसेज को कॉल करें 718-321-7929 या SACSS ऑफिस विजिट करें 143-02 45th Ave, Flushing, New York. अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sacssny.org. विशाल मिश्रा लाइव इन न्यू जर्सी फ्राइडे जून 26 हार्ड रॉक एटलांटिक सिटी. बुक एट टिकट मास्टर एंड sciusainc.com.
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, वुल्फ और शीप. मैं वुल्फ हूँ. तो क्या है?
8: वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर.
7: हमारी एकलौती
9: अल्फा.
10: The YRF Spy Universe gets its most lethal weapon, Alpha. Hunting in US and Canada cinemas from 3rd July. A Yash Raj Films release.
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
11: अब मिर्ची खा.
13: Radio Mirchi, it's hot.
0: पुरानी जीन्स with Charu, only.

हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये सुपरहिट आइकॉनिक सॉन्ग पहले एक डुएट सॉन्ग होने वाला था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, आशा भोसले एंड उषा उथुप जी, इनफैक्ट दोनों ने इस गाने की बहुत रिहर्सल्स भी की थी। ये बात उषा उथुप जी ने एक टेलीविजन शो में शेयर की थी, लेकिन ऑन द डे ऑफ रिकॉर्डिंग उषा उथुप जी को बुलाया ही नहीं गया। जब उन्होंने फोन करके पूछा कि कब आना है रिकॉर्डिंग के लिए, तो उनको बताया गया कि ये गाना अकेले आशा जी गा रही हैं। ये बात उनको बहुत हर्ट हुई उषा जी को, लेकिन उन्होंने फिर इंटरव्यू में आगे ये शेयर किया कि वो गुस्सा नहीं हुई क्योंकि वो बिलीव करती हैं कि गाने गाने पे लिखा है गाने वाले का नाम। तो चलिए वो गाना सुन लेते हैं जिसपे कम्प्लीटली लिखा है उषा उथुप जी का नाम। क्या ब्रिलियंटली गाया है उन्होंने ये गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: अमर प्रेम फिल्म का ब्यूटीफुल गाना चिंगारी कोई भड़के। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस गाने की शूटिंग कैसे हुई थी एक बार ना कपिल शर्मा शो पे शर्मिला टैगोर जी ने शेयर किया था, सुनिए जरा।
1: अमर प्रेम में यू नो जो हुगली में हमने जो शॉट दिया ना वो रिवर में चिंगारी कोई, सच अ लवली सॉन्ग। आप लोग सब थोड़ा सा आपको इल्यूशन टूट जाएंगे। जो लॉन्ग शॉट्स था वो सब एक्चुअल आउटडोर में किया गया, मगर बाकी गाने कंट्रोल करने के लाइटिंग वगैरह तो इट वाज इंडोर। एंड दैट लेक जो उन्होंने बनाए थे तो कम से कम 7-8 दिन रहा। कैन यू इमेजिन द स्टैग्नेंट, और फिर हमें चल के जाना पड़ता था, अजीब सा बदबू, स्मेल वाज लाइक दैट, बट डिस्पाइट हाउ लवली वी लुक, ऑल द इल्यूजन नाउ विल गो।
0: तो अभी आप जब ये गाना सुनेंगे ना, याद कीजिएगा कि शर्मिला टैगोर एंड राजेश खन्ना ऐसे बदबूदार पानी सूंघते गाना पिक्चराइज कर रहे थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजिलिन।
5: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
8: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu.

0: आपको पता है प्रेम चोपड़ा साहब और राज कपूर साहब दोनों साड़ू साड़ू ब्रदर इन लॉज रहे हैं, मतलब इन दोनों की जो वाइव्स रही हैं वो सिस्टर्स रही हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और साड़ू साहब की फिल्म बॉबी से ही प्रेम चोपड़ा साहब को मिला उनके करियर का मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग। एक बार इस फिल्म में काम करने की स्टोरी उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर की थी, सुनिए।
1: राज कपूर साहब वाज अ जीनियस, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया यार एक पिक्चर में काम करना, तो उन्होंने मेरी, मैंने कहा मैं तो उछल गया, मैं कहा व्हाई नॉट, करेंगे जी काम आपके साथ, कौन नहीं काम करेगा। बस वो बातों बातों में उन्होंने कहा ये है स्पेशल अपीयरेंस। अरे मैंने कहा अच्छा आपके लिए कुछ भी करूं। अब वहां पर पहुंचे कट टू पूना, तो मैंने पूछता रहा था बीच में राज साहब क्या डायलॉग क्या है यार, मेरे को सीन वीन तो बता दीजिए। बताएंगे यार बताएंगे बताएंगे। तो वहां पहुंचे तो कहते जी आपका एक ही डायलॉग सारी पिक्चर में, वो क्या है, प्रेम, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा।
0: गूज़बम्प्स अभी भी सुन के डर लगता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

अर्ज किया है, जरा गौर से सुनिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हाँ, तो ये शेर है असद भोपाली साहब का। ये आंसू ढूंढता है तेरा दामन, ये आंसू ढूंढता है तेरा दामन, मुसाफिर अपनी मंजिल जानता है। ये वही असद भोपाली साहब हैं जिन्होंने कई सुंदर गाने लिखे हैं, जैसे कि पारस मणि एक पुरानी फिल्म थी, उसके गाने हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये वही गाना है जो राजश्रीज की फिल्म हम आपके हैं कौन के एक बहुत ही प्यारे सीन में इस्तेमाल हुआ था, जहां सारी फैमिली बैठ के वो गेम खेल रही होती है, जिसमें माधुरी दीक्षित का वो आहा वाला मोमेंट था, और उसके बाद माए नी माए मुंडेर पे तेरी वो गाना आता है उस सीन के बाद। खैर, राजश्रीज की एक और आइकॉनिक फिल्म मैंने प्यार किया के गाने लिखे हैं असद भोपाली साहब ने, तो एक गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 7323578200. जय गुरुदेव.
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2. वो जो पहले तुमसे मिला था अब हम सबसे मिलने आ रहा है.
5: पहले भी मैं तुमसे मिला.
6: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा नॉन अदर देन विशाल मिश्रा.
7: विशाल मिश्रा.
4: अमित जेटी ऑफ साई USA Inc. presents अ नाइट लार्जर देन लाइफ. विशाल मिश्रा's पागलपन टूर. फ्राइडे जून 26th हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी. बुक योर टिकट्स एट ticketmaster.com
8: एंड saiusainc.com.
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
12: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
11: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
13: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है.
14: एक ही होता है.
11: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
0: Pudani Jeans with Charu, only on

0: रेखा ने जब हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की तो उनको उनके लुक्स, उनके वेट के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था। मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसी वजह से काफी एक्टर्स उनके साथ काम करने से मना कर देते थे। क्या रेखा ने भी कभी ऐसा किया कि उनको पता चला हो कि फलानी फिल्म का हीरो ये है और इसके साथ वो काम नहीं करेंगी? सुनिए एक बार एक पुराने और एक पॉपुलर इंटरव्यू में रेखा ने इस बारे में क्या कहा था।
1: ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर कहा है कि इस रोल के लिए ये पर्टिकुलर आर्टिस्ट सूट नहीं करते हैं, ये जरूर कहा, सजेशन जरूर दी है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि अच्छा अगर ये हीरो है तो भैया हम नहीं काम करेंगे, क्योंकि मेरा किसी ऐसे हीरो या किसी आर्टिस्ट के साथ ऐसी रैपो, बैड रैपो है नहीं, सबके साथ मेरा अच्छा रैपो।
0: और कौन से वो एक्टर थे जिनके साथ उनका रैपो सबसे बढ़िया था?
1: बहुत अच्छा, मेरा तो सबसे अच्छा तो मेरा रणधीर कपूर के साथ था। Unfortunately, अब मेरी कोई फिल्म नहीं है उनके साथ।
0: Well, ये mid-80s का इंटरव्यू था। इसके बाद रणधीर कपूर के साथ उनकी कुछ फिल्में आई थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: क्या कहा?

दिस आइकॉनिक सॉन्ग कंपोज बाय आरडी बर्मन। रिची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसा भी हो सकता था कि ये गाना शायद कभी बनता ही नहीं, क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स 1970 की द ट्रेन के प्रोड्यूसर्स एक्चुअली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन करने वाले थे इस फिल्म के म्यूजिक के लिए, लेकिन वो इन दिनों बहुत बिजी थे। फिर एसडी बर्मन साहब को भी अप्रोच किया गया, वो भी नहीं इसका म्यूजिक कर पाए, एंड देन इवेंचुअली आरडी बर्मन को साइन किया गया। एंड फिर एज यूजुअल आरडी ने अपने आरडी एक्स ब्रूम गाने बना दिए, जिनमें से एक ये भी था, द वेरी आइकॉनिक, द वेरी क्लासिक गुलाबी आंखें। फिलहाल आपने किसकी याद में अपनी आंखें गुलाबी, लाल, पीली, नीली कर रखी हैं? जिसकी भी याद में कर रखी हैं, कोई ऐसा जो आपसे बहुत दूर चला गया है उसको, और आपको डेडिकेटेड है ये अगला गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington.
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

मंडे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना, काम तो बिल्कुल भी नहीं होती। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। क्योंकि यार मंडे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि दिमाग अभी भी वीकेंड टाइम जोन में होता है। बॉडी ऑलरेडी ऑफिस तो पहुंच जाती है, लैपटॉप ऑन हो जाता है, लेकिन दिमाग अभी भी सैटरडे के किसी लंच टेबल पर बैठा होता है। कोई अभी भी वीकेंड की फोटोज देख रहा होता है, कोई लेफ्ट ओवर्स फिनिश कर रहा होता है, और कोई सीक्रेटली कैलकुलेट कर रहा होता है कि नेक्स्ट लॉन्ग वीकेंड कितना दूर है। लेकिन मंडे शाम आते ना रियलिटी ऑफिशियली एक्सेप्ट हो ही जाती है कि चलो ठीक है, वीक शुरू हो चुका है। लेकिन एक अच्छी बात तो जरूर है कि मंडे इवनिंग आते आते प्रेशर कम हो ही जाता है, सुबह वाली वो रश निकल जाती है, मीटिंग्स खत्म हो जाती है, और अब थोड़ा सा अपना टाइम मिल ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, मंडे को भी इतना सीरियसली नहीं लेते, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा मस्ती और थोड़ी शाम शानदार हो जाए। और आप भी बताइए कि आप ऐसे मंडे को कैसे सर्वाइव करते हो, आपका सीक्रेट वेपन क्या है, कॉफी, चाय, म्यूजिक या प्योर विल पावर। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि इस शाम को शानदार बनाने के लिए मेरा जो सीक्रेट वेपन है वो है आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escava la puscava la sacabana.
2: Cabana.
1: Burga, burga. La viva la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है. अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए. कृपया लाइन होल्ड करें. हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं.
5: हेलो.
3: हेलो.
5: कौन बोल रही हैं
3: आप? कौन बोल रही हैं?
5: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास.
3: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था.
5: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ.
3: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया.
5: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं. यार मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
3: ये तो वहाँ से मेरे पास,
5: अरे यार
3: जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे.
5: हो सकता है, हो सकता है.
4: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है. कृपया लाइन होल्ड रखें. आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा.
5: हेलो.
3: हेलो.
5: कौन बोल रही? अरे भाई Hello? यार मैं लड़की के चक्कर में यार, कहाँ से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन मैं कहाँ से लाइन पे आ रहा हूँ यार? तू लाइन में आ रहा है या लाइन में आ रहा हूँ? तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे. हाँ तो दो मिनट रुक के तू कर ले, तेरे कुछ जा रहा
3: है?
5: बदतमीजी मत कर. तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में.
4: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें. अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू.
3: हेलो
5: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार. आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
3: तो अब वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
10: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
8: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
11: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
12: Duniya mein sirf do tarah ke log hove hain, wolf aur sheep. Main wolf hoon. To kya?
13: वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर.
12: हमारी इकलौती
14: अल्फा.
15: द YRF स्पाई यूनिवर्स गेट्स इट्स मोस्ट लीथल वेपन अल्फा. हंटिंग इन US एंड Canada सिनेमास फ्रॉम 3rd जुलाई. अ यशराज फिल्म्स रिलीज.
16: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप, शैल वी रिन्यू आवर वाउज?
17: एब्सोल्युटली, एंड व्हाइल वी आर एट इट, आई शुड रिन्यू सम ऑफ माय ओल्ड ज्वेलरी टू.
16: Renew?
17: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
16: What better way to celebrate than with something timeless?
17: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islip, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
18: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
19: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
18: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
0: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
20: मिर्ची खा।
21: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: की टाइम।
1: दोस्तों, हर फैमिली के घर में एक कबर्ड होता है जिसमें पुरानी चीजें छुपी होती है। लेकिन सोचो, अगर एक दिन घर में एक डेड बॉडी छुपानी पड़ जाए तो। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और इस हफ्ते ओटीटी पे सबसे इंटरेस्टिंग बज बना है माँ बहन को लेकर। जी हाँ, फिल्म में माधुरी दीक्षित, तृप्ति दिमरी और धरना दुर्गा एक माँ और दो बेटियों के रोल में नजर आ रही है, जिनकी ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ और भी ज्यादा उलझ जाती है जब उनके घर में एक लाश मिल जाती है। डार्क कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और केओस, तीनों एक साथ। और मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात इस मूवी की ये लगती है कि जहां हमने माधुरी जी को रोमांस, डांस और ड्रामा में देखा है, लेकिन डार्क कॉमेडी में जब ऑडियंस उन्हें पहली बार देखेंगी ना, एक अलग ही फ्रेश एक्सपीरियंस बन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का टोन सस्पेंस से ज्यादा क्वर्की फैमिली मैडनेस वाला है। तो आप भी जरूर बताना कि माधुरी जी को इस नए अंदाज में देखने के लिए आप कितने बेसब्र हो। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी, SIDDHI। और तब तक के लिए माधुरी का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: Dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, d

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots par aane wala kal ek ho jate hain.
4: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarti to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
3: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyo purani ada, bringing a global community back to its home.
4: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
10: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
11: Listener, mein back to back gana sunega.
12: Back to back gana sunega.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: It's 4:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Sharda. Let's do not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों सीक्वल्स तब बनते हैं जब ओरिजिनल की यादें ना लोगों के दिल से जाती नहीं। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो कॉकटेल को रिलीज हुए सालों हो गए, लेकिन आज भी उसके गाने जब भी बजते हैं ना, लोग एकदम से उसी दुनिया में वापस चले जाते हैं। और अब कॉकटेल 2 की रिलीज के साथ वही फीलिंग फिर से आ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉकटेल 2 ना बिल्कुल भी पहली कॉकटेल जैसी नहीं है। मतलब दुनिया वही है, इमोशन वही है, लेकिन प्रेजेंटेशन बिल्कुल नया है, कहानी नई है, अंदाज नया है, एकदम नए अवतार में। और शायद जिंदगी में भी ना हम सबको यही बात पसंद है, पुरानी चीजें लेकिन नए अवतार में। क्योंकि जब कोई पुरानी पसंदीदा चीज एक नए रूप में वापस आ जाती है ना, तो उसका नया अवतार, नया वर्जन देखने में ना वही मजा आता है। और शायद इसीलिए कुछ लोग आजकल अपनी पुरानी चीजों को भी ना एक नए अवतार में देखना पसंद कर रहे हैं। और इसी थॉट के साथ तनिष्क भी लाया है फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, यानी आप अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी विच इज अबाउट 9 कैरेट बॉट फ्रॉम एनी ज्वेलर्स लेकर जा सकते हो तनिष्क के पास फॉर फुल वैल्यू एंड विद 0 deductions, and you'll also get an additional $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases. Terms and conditions apply. तो आज ही विजिट कीजिए तनिष्क न्यू जर्सी एट 1429 ओक ट्री रोड इजलिन और अपने ओल्ड ज्वेलरी को दीजिए एक नया अवतार। और अब देखते हैं कॉकटेल 2 अपने म्यूजिक के साथ कितनी नई यादें बनाता है। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट कॉकटेल 2 सॉन्ग, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मेरा फेवरेट गाना बजाते हैं अभी राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: मिर्ची फ्रेश माल, हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
1: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
3: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
1: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
3: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
1: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
4: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

दोस्तों, प्यार का ना सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है? पागलपन। और वो भी वो वाला पागलपन जिसका कोई इलाज नहीं होता। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज बात उस गाने की हो रही है जो याद दिलाता है कि प्यार में ना थोड़ा पागल होना अलाउड है। सैयारा का गाना तुम हो तो, क्योंकि इस गाने को सुनते वक्त लगता है कि जैसे दुनिया का सारा लॉजिक एक तरफ और दिल एक तरफ। और इसे गाया और कंपोज किया गया है विशाल मिश्रा ने, जिनके गाने की ना एक खास बात होती है कि वो प्यार को परफेक्ट नहीं दिखाते, वो उसका पागलपन दिखा देते। किसी का मैसेज बार बार पढ़ना, बिना वजह स्माइल करना, हर गाने में एक ही चेहरा दिखाना, यार ये सब वही स्वीट मैडनेस है जो इस मेलेडी में महसूस होती है जब भी हम ये गाना सुनते हैं। और विशाल मिश्रा की सॉफ्ट वोकल्स और कंपोजिशन गाने की फीलिंग को इतना गहरा कर देती है ना कि लिसनर खुद अपनी कहानी सोचने लगता है। और शायद इसीलिए उनके रोमांटिक सॉन्ग्स इतने ज्यादा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें प्यार कम और उसका पागलपन ज्यादा सुनाई देता है। तो चलिए आज कन्फेशन करते हैं, प्यार में आपने सबसे पागल चीज क्या की थी? लॉन्ग ड्राइव, लेट नाइट कॉल्स, या फिर किसी का लास्ट सीन चुप चुप के देखना? टेल मी ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और सुनते हैं विशाल मिश्रा ने गाया हुआ पागलपन वाला ये गाना, तुम हो तो, फ्रॉम सैयारा, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों, क्या कभी किसी गाने ने आपको आपकी ही कहानी याद दिलाई है? वो पहला प्यार, वो रात भर चलने वाली बातें, वो एक नाम जो आज भी किसी गाने के साथ याद आ ही जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है एक ऐसे कंपोजर की जिनका हर गाना हमें अपनी कहानी जैसा लगता है। अ वॉइस दैट गेव अस कैसे हुआ, पहले भी मैं तुम हो तो, जिन गानों को ना हमने सिर्फ सुना नहीं है बल्कि महसूस किया है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आ रहा है विशाल मिश्रा पागलपन टूर, ब्रॉट टू यू बाय अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी। और नाम ही सब कुछ कह देता है, पागलपन यानी वही पागलपन जो प्यार में होता है, वही पागलपन जो किसी याद को गाने के साथ जोड़ देता है, और वही पागलपन जो अटलांटिक सिटी में हजारों लोगों को एक साथ एक ही सुर में लाने वाला है। तो डेट नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि विशाल मिश्रा आ रहे हैं 26 जून शुक्रवार की शाम को हार्ड रॉक लाइव एट ईटस एरिना अटलांटिक सिटी में। और आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो फ्रॉम ticketmaster.com या फिर saiusa.com। और हमेशा की तरह मिर्ची लिसनर्स के लिए एक खास कॉन्टेस्ट, आपको बताना है कि विशाल मिश्रा का कंपोज गाना कैसे हुआ, कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ, कौन से मूवी का है। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एट 9033647244 टू विन फ्री कॉन्सर्ट टिकट्स। एंड रिमेंबर माय फ्रेंड्स, इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन, सो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर इवनिंग विद विशाल मिश्रा पागलपन टूर। एक शाम जहां गाने सिर्फ परफॉर्म नहीं होंगे, वो आपको आपकी खुद की कहानी याद दिलाएंगे। तो जल्दी से अपने टिकट बुक कर लीजिए और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Cabana! ¡Burga, burga! ¡La vida para la burga! ¡Milchi, burga! ¡Acá!
2: ¿Aló?
3: Hello, madam, good evening.
2: Hi.
3: बैंक से बोल रहे हो ना, हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
2: सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
3: पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गया ना
3: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा।
2: वे वही आके बैठ मारूंगी ना।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
3: मैडम, आपका तो मुर्गा बन गया।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था, ये बीप हटा दूं मैं एक बार? दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी,
2: आई एम सॉरी नवे, आई एम सॉरी।
4: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को है।
2: कुकड़ू गो।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: इट्स पटाक।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
6: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
8: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
9: अभी न जाओ छोड़ कर।
6: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
11: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
13: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
14: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
13: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
14: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islin.
6: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
15: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
18: तू सफर

0: It's 5:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham shandar. Let's do Nautanki. Have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हैरत से नहीं, एनर्जी से भर गया था ये ट्रैक, क्योंकि यार ये गाना फ्रॉम द एल्बम अनजाना अनजानी सुन के यार मूड ना एकदम ऑटो फ्रेश हो जाता था। लकी अली की वॉइस विशाल शेखर के बीट मैजिक क्रिएट कर देता था। और जी हाँ, हैरत वो गाना था जो रणबीर के जो बाइक राइड या कार राइड के सीन्स थे उन सबको भुलाकर अपने इनर ट्रैवलर को जगाने के लिए बनाया गया था। मतलब अगर वेगस में ड्राइव कर रहे हो तो मन में हैरत गाना तो बचता ही था। तो चलिए आज इस गाने का टेम्पो फील करते हैं। गाड़ी फुल स्पीड में मत चलाना क्योंकि हम अभी भी न्यू जर्सी में हैं, लेकिन गाने का तो फील कर सकते हैं बॉस। तो चलिए सुनते हैं हैरत फ्रॉम द एल्बम अनजाना अनजानी राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ Mirchi Siddhi SIDDHI। और तब तक के लिए हैरत राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: की टाइम।
1: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम की जिसका हर एक गाना यार हिट पे हिट था। और इस एल्बम का जो टाइटल ट्रैक था उसने यार सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि पूरे जनरेशन का मूड बना दिया था। जी हाँ, बात हो रही है अनजाना अनजानी की। और अनजाना अनजानी की जो कहानी है जो विशाल ददलानी और शिल्पा राव के डुएट में गाया गया था, जिसके लिरिक्स में ही ना वो एक वंडरलस्ट फील था कि कौन जाने कौन हूँ मैं, मतलब इंस्टेंट कनेक्ट था। और सबके लाइफ में जो ये अपनी जो भी अपनी राह ढूंढ रहे होते हैं ना, उनके लिए एकदम हिटिंग सॉन्ग था ये। वैसे गाना सुन के तो लगता था जैसे जिंदगी ना एक ट्रिप है, मतलब डेस्टिनेशन नहीं। तो अगर आपको भी ऐसा ही गाना जर्नी वाला पसंद है तो मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम योर फेवरेट एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिट्री सिद्धि SIDDHR। और फिलहाल बजाते हैं ये अनजान अनजानी का सुपर डुपर हिट गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, 2010 में आई थी ये एल्बम अनजाना अनजानी, कंपोज्ड बाय विशाल शेखर। और इसका एक ऐसा गाना आया था जिसमें यार मतलब दिल तोड़ दिया या फिर यादें छोड़ गई हो ना, बस वो गाना सुन लो हर फीलिंग डबल हो जाती थी। मोहित चौहान की आवाज़ में और शेखर रवजियानी ने भी जो इमोशन दिया था इस ट्रैक में, ओहो, किसी थेरेपी से ना कम नहीं था। क्योंकि इस गाने में सूफी टच भी था, मॉडर्न मेलोडी भी थी, जैसे कि दर्द और सुकून बिल्कुल एक साथ मिल गए हो। तो दोस्तों, इतना प्यारा गाना इस एल्बम का। वैसे तो यार इस एल्बम के हर एक गाने अमेजिंग थे, तो आपको कौन सा गाना इस एल्बम का सबसे ज़्यादा पसंद है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल ये जो ब्रेकअप रिकवरी वाला गाना है ना, सुन लेते हैं यार विशाल शेखर की कंपोजिशन राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Whipple, man. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
2: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
2: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
3: हाँ बताइए
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
3: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
3: मैं कुछ भी करूं यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
2: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूं ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
3: बिल्कुल,
2: से कम मुझे
3: बिल्कुल, से, बिल्कुल सही कह रहे हैं
2: जा कहां रहा है
3: नहीं वो जा कहां रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको
3: वैसे आप बुरा मत मानना आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
2: यार क्या बात कर रहा हूं मतलब
3: नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
2: चल
3: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
2: बिल्कुल
3: क्या बात कर रहे हैं यार मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं आप फोन काट रहे हैं यार
2: तो आपको से फोन मत करियो मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर
3: क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज जूल्स किंगडम ऑफ जूल्स वेयर ट्रेडिशन मीट स्टाइल
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
10: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती। वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी डीप खाओ तो जानो
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
14: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी
13: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले
15: अभी न जाओ छोड़ कर
14: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium Oak Tree Road call Satish right now at 862-812-9111
16: Our anniversary is coming up shall we renew our vows
17: Absolutely and while we're at it I should renew some of my old jewelry too
16: Renew?
17: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
16: What better way to celebrate than with something timeless?
17: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
18: Listener mein back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
19: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

लंबी लंबी ट्रिप्स के बाद अगर कोई एक चीज की क्रेविंग होती है तो वो क्या है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सबके दिल से एक ही आवाज निकली होगी, घर के खाने की। जी हाँ, सफर चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर कितना भी खा लिया हो, एक पॉइंट के बाद ना दिल बस कुछ सिंपल गर्मा गर्म और अपना सा चाहता है। आपने कभी नोटिस किया है, थकान तो आधी तब उतर जाती है जब किचन से हल्की सी तड़के की खुशबू आती है, और फिर याद आता है कि कुछ कंफर्ट फूड ना फैशनेबल नहीं होते, बस फॉरएवर होते हैं। और मेरे लिए उस सुकून का एक ही नाम है, एक गर्मा गर्म बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सी घी, साथ में थोड़ा सा अचार, और बस जैसे सफर की सारी थकान ही उतर गई हो। बॉडी को ऐसा ईज मिलता है और दिल को भी इतना ज्यादा सुकून मिलता है विद जस्ट दैट वन बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी। इतना सिंपल सा खाना, लेकिन क्या कमाल का कंफर्ट है, ऑनेस्टली अंडररेटेड। और ऐसे ही घर वाले स्वाद के लिए आज ही ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मूंग दाल फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दीप, खाओ तो जानो और मुझे बताओ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन.
6: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है.
7: पहले भी मैं तुमसे मिला.
8: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नॉन अदर देन विशाल मिश्रा.
9: विशाल मिश्रा
10: जेटली ऑफ साई USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour, Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com
11: and saiusainc.com.
12: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक.
13: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर. ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2.
14: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jaano.
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
16: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
17: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
16: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
18: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
16: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
19: एक ही होता है.
16: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: is 6:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do Nautanki. Have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी और आज एक ऐसे एल्बम के बारे में बात हो रही है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, अनजाना अनजानी 2010 में रिलीज हुआ वो एल्बम। और आज की जो रिक्वेस्ट आई है, सॉन्ग रिक्वेस्ट, दैट इज फॉर द सॉन्ग तुमसे ही तुमसे। और ये जो रिक्वेस्ट आई है, दैट इज फ्रॉम रिया, और जो कि रहती है एडिसन में। और रिया जी कहती है कि यार ये गाना जो तुमसे ही तुमसे गाना है, प्लीज सिद्धि जी बजा देना, क्योंकि ये मूड रोमांटिक है और वेदर भी रोमांटिक है, तो ऐसे माहौल में ये गाना तो बजना चाहिए। तो जी हाँ रिया जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। दोस्तों वैसे क्या आपको 2010 का वक्त याद है, जब अनजाना अनजानी एल्बम ने सबको होपलेस रोमांटिक ही बना दिया था। मतलब विशाल शेखर का मैजिक चला था और इतनी खूबसूरत सी आवाज है हर गाने में, विशाल की कहिए, शिल्पा राव की कहिए, रणबीर प्रियंका की केमिस्ट्री, ओ हो हो, मतलब तुमसे ही तुमसे एक बहुत ही सुंदर सा गाना है जहाँ हर नोट लगता है जैसे दिल से निकला हो। जैसे लॉन्ग ड्राइव पे सनसेट के टाइम ये गाना बज जाए ना, तो बस दुनिया रुक जाए। और मुझे तो लगता है कि हर किसी के लाइफ में एक तुमसे ही तुमसे मोमेंट जरूर होता है जहाँ सब कुछ एकदम ब्लर सा हो जाता है और बस वो एक इंसान दिखता है जो दिल में है। तो बताइए आपका तुमसे ही तुमसे मोमेंट कब आया था? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम जे मिर्ची सिद्धी SIDDHI, या फिर इसी एल्बम का आपका फेवरेट गाना भी आप बता सकते हो। फिलहाल हम बजा रहे हैं तुमसे ही तुमसे, रिया जी के रिक्वेस्ट पर, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: की टाइम।
1: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। चमचांदा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है 2010 के एल्बम की, अनजाना अनजानी के एल्बम की, जिसको कंपोज किया है विशाल और शेखर ने। और फिलहाल जो रिक्वेस्ट आई है दैट इज फ्रॉम राज, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में। और यार वो कहते हैं कि यार माहौल इतना अमेजिंग सा है, मौसम खूबसूरत सा है, तो थोड़ा अपबीट गाना चाहिए। जी हाँ, तो इसी के लिए आई फील गुड जरूर बजाइए। तो बस नाम ही काफ़ी है यार, मतलब आई फील गुड एक ऐसा गाना जो बजते ही लगता है कि दुनिया में ना स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और रणबीर और प्रियंका की केयर फ्री केमिस्ट्री इन दिस मूवी अनजाना अनजानी, न्यूयॉर्क इन योर लाइट और विशाल ददलानी की वो रॉक स्टार एनर्जी, इस सॉन्ग को हर बीट में ऐसा लगता है कि बस लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाओ और चिल कर लो यार। तो चलिए आज बजाते हैं आई फील गुड फ्रॉम द वंडरफुल एल्बम ऑफ अनजाना अनजानी, जिसका हर एक गाना जबरदस्त है। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो वो ऐसा कौन सा एल्बम है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए राज की रिक्वेस्ट पर बजाते हैं आई फील गुड राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों, कुछ लव सॉन्ग सुनते ही लगता है कि ये गाना लिखा नहीं गया है, किसी ने ना बस दिल की बात रिकॉर्ड कर दी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और न्यू जर्सी के शाम में अगर कोई गाना प्यार की सिंप्लिसिटी को कैप्चर करता है ना, तो वो है कैसे हुआ फ्रॉम द एल्बम कबीर सिंह। और यार, कैसे हुआ सुनते वक्त ना मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इसके जो कंपोजर है विशाल मिश्रा, उनको शायद द ग्रैंड रोमांस से ज्यादा छोटी छोटी फीलिंग्स पसंद आती होंगी, क्योंकि इस गाने में ना ज्यादा ड्रामेटिक डिक्लेरेशंस हैं, ना ओवर द टॉप अरेंजमेंट्स हैं, बस एक सिंपल मेलोडी है जो यार सीधा दिल तक पहुंचती है। क्योंकि विशाल मिश्रा ने इस गाने को कंपोज भी किया है, लिखा भी है और खुद गाया भी है, और शायद इसीलिए ये गाना इतना ऑर्गेनिक लगता है। जैसे कबीर सिंह के इंटेंस वर्ल्ड में ये ट्रैक ना एक सॉफ्ट सी हार्टबीट की तरह काम करता है। और कभी कभी ना सिंप्लिसिटी सबसे मुश्किल चीज होती है, और ये वो गाना है जो उसका एब्सोल्यूट प्रूफ है। क्योंकि यार, विशाल मिश्रा की मेलोडीज में ना एक खास बात जरूर होती है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। पहली बार सुनो तो लगता है कि जैसे गाना ना पहले से ही दिल में था, और शायद इसीलिए कैसे हुआ आज भी लोग गाते हैं, चाहे उन्हें गाना सीखा है या नहीं सीखा है, लेकिन दिल से गुनगुनाते जरूर है। तो दोस्तों, आप भी बताना कि आपकी लाइफ का वो कैसे हुआ मोमेंट क्या था जब प्यार ने बिना नॉक किए एंट्री मार दी थी, और क्या तब ये गाना बैकग्राउंड में चला था। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और फिलहाल सुनते हैं विशाल मिश्रा की कंपोजिशन कैसे हुआ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. La vieva la murga. Mirci, murga.
1: Hello.
2: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रही हैं?
1: आप कौन बोल रही हैं?
3: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
1: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
3: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
1: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
3: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
1: ये तो वहाँ से मेरे पास,
3: अरे यार
1: जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे।
3: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है।
2: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रही? अरे भाई यार मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार? तू लाइन में आ रहा है? लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरे तो तेरा कुछ जा रहा
1: है।
3: यार बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
2: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ूकू। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
1: मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Inefficient.
7: Very complex.
8: Clumsy or
9: confusion ही confusion.
4: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
12: No!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
13: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
14: पहले भी मैं तुमसे मिला।
15: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नॉन अदर देन विशाल मिश्रा।
16: विशाल मिश्रा,
13: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्रेजेंट्स अ नाइट लार्जर देन लाइफ, विशाल मिश्रा'स पागलपन टूर, फ्राइडे जून 26th, हार्ड रॉक लाइव, ईटेस अरीना, अटलांटिक सिटी। बुक योर टिकट्स एट ticketmaster.com एंड saiusainc.com.
17: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
18: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.
19: Tera kya hoga, Kalia?
13: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
19: Ab mirchi kha.
7: Radio Mirchi, it's hot.

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी कुछ कॉन्सर्ट्स ना सिर्फ कॉन्सर्ट्स नहीं होते, वो यादों का रीयूनियन होता है। एक गाना चलता है और आपको आपका पहला प्यार याद दिला देता है, दूसरा गाना आता है और पुराने दोस्त, लॉन्ग ड्राइव्स और वो रात भर चलने वाली बातें भी याद आ जाती है। और जब बात हो विशाल मिश्रा के कंपोज गानों की, तो यार उनके गाने ना सीधा दिल तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए एक्साइटमेंट डबल है क्योंकि इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए INC प्रेजेंटेशन, और ये होने वाला है ग्रैंड, मैजिकल और ट्रूली अनफॉरगेटेबल, क्योंकि विशाल मिश्रा आ रहे हैं विद पागलपन टूर इन अटलांटिक सिटी। और अगर आपने भी कैसे हुआ पहले भी मैं तुम हो तो या उनके किसी भी गाने को सिर्फ सुना ही नहीं लेकिन महसूस भी किया है, तो ये शाम आपके लिए है दोस्तों। हजारों फैंस एक साथ गाते हुए लिरिक्स, फोन फ्लैश लाइट्स का समंदर और वो गूज बम्स वाला मोमेंट जब पूरा एरिना एक ही सुर में गा रहा होगा। June 26 की शाम को हार्ड रॉक लाइव ईटिस एरिना में कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो जल्दी से अपने टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम टिकट मास्टर या फिर साई यूएसए INC फॉर विशाल मिश्रा पागल पर टूर। और सारे जो रेडियो मिर्ची के विशाल मिश्रा फैंस हैं उनके लिए एक बहुत ही खास कॉन्टेस्ट। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है कि विशाल मिश्रा का गाना कैसे हुआ, कौन सी मूवी का है, यू हैव टू टेल मी ऑन माई इंस्टाग्राम। तो बस DM कर दीजिए @RJMirchiSiddhi SIDDHI आपका जवाब, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते 9033647244 9033647244, और लकी विनर्स को मिलेंगे इस अमेजिंग टूर के फ्री टिकट्स। तो दोस्तों विशाल मिश्रा पागलपन टूर, डेट नोट डाउन कर लीजिए, June 26, वेन्यू हार्ड रॉक लाइव एट ईटिस एरिना, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वेन्यू इन द एंटायर न्यू जर्सी। टिकट्स बुक कर लीजिए ticketmaster.com या फिर SIUSAINC। और देखिए दोस्तों, इट्स विशाल मिश्रा पागलपन टूर ब्रॉट टू यू बाय अमित जेटली ऑफ साई यूएसए INC। तो एक ऐसी म्यूजिकल जर्नी होने वाली है जिसकी यादें काफी हफ्तों तक आपके दिमाग में रहेंगी, आपके दिल में रहेंगी। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से अपने टिकट्स बुक कर लीजिए, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव। कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2। अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
7: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SciUSAInc.com.
8: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
9: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
8: Renew?
9: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
8: What better way to celebrate than with something timeless?
9: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.

0: It's 7:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Sharda, let's do not donkey, have a funky time.
2: कभी कभी कोई गाना ऐसा होता है जो बजते ही शाम का मूड चेंज कर देता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और 2000 एरा का एक ऐसा ही टाइमलेस ट्रैक है कल हो ना हो। यार जैसे ही उसका सॉफ्ट पियानो इंट्रो शुरू होता है ना, सडनली सब कुछ थोड़ा सा स्लो लगने लगता है। ड्राइव हो, चाय हो या बस विंडोज से बाहर देखना, यार इस गाने की खूबसूरती ही ये है कि ये लाउड नहीं है पर इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा डीप है। सिंपल सी मेलोडी है, सोलफुल सी आवाज है, वो भी सोनू निगम की, और वो लाइन जो याद दिलाती है कि हर दिन को ना थोड़ा और अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसीलिए जब भी ये ट्रैक रेडियो पे आता है ना, लोग ऑटोमेटिकली वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा ही लेते हैं, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो ना मूड बन जाते हैं। तो दोस्तों आप भी बताना कि कौन सा ऐसा बॉलीवुड का गाना है जो सुनते ही आपको भी वो पॉज और फील मोमेंट मिलता है। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए कल हो ना हो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विद नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।